मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 16, तदनुसार 6 अप्रैल सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: एक ढेले को आसमान में उछालते हैं। मिट्टी का वो टुकड़ा तब तक चंचल अस्थिर बना रहता है जब तक वो पुनः पृथ्वी पर ना आए। यही बात मन के साथ है, ये अपनी मूल सत्ता के संपर्क में आने पर स्थिर हो सकता है। मन ही है जो समूचे कार्यतंत्र पर अपना आधिपत्य रखता है। मन ही बंधन है।

0: और मोक्ष का कारण है। मन में वो असीम शक्ति है जो स्वर्ग को नरक में परिवर्तित कर दे और नरक को स्वर्ग बना दे। मन यदि जीत गया तो बाजी मार गया, यदि हार गया तो परास्त हो गया। हमें स्वयं विचार करना होगा कि इसे ईश्वरोन्मुखी बनाया जाए या विश्वरूप विषय की ओर छोड़ दिया जाए। इसे वश में करना असंभव नहीं, कठिन अवश्य है, क्योंकि मन बराबर जगत के प्रपंचों में फंसता रहता है। ये मलिन मन मूल प्रवृत्तियों को त्यागना नहीं चाहता। संतों के विचार कुछ इस प्रकार हैं। वे कहते हैं, मन रूपी घोड़ा बहुत जोर करता है, धीर नहीं मानता, विषयों की ओर से भागता है। हे सच्चे साधक, इस घोड़े को विचार और साधना अभ्यास की कड़ी लगाम देकर जोर से पकड़ो, मन को मारो, यानी मन के वशीभूत न होकर मन को वश करो। आराधना, प्रार्थना, नाम, जप, स्मरण, ध्यान तथा योग के द्वारा योगी जन भटकते मन की वृत्तियों को संयत करते हैं, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी बनाते हैं। इसे हम मनोविज्ञान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन वचन कर्म से अपने हृदय में सच्चे बने रहो, दिन रात श्याम का सुमिरन करो, यश गाओ और पंच विषय रस में लीनता को श्याम के प्रेम में लगाकर मिटा डालो। पंच विषय यानी रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। आंख सुंदरता की ओर भाग रही है, जिह्वा रस यानी स्वाद के पीछे पड़ी है। ये कर्ण शब्द से लाभान्वित हैं, नासिका गंध सुगंध में लीन है और चर्म सुखद स्पर्श चाहता है। पांच ज्ञानेंद्रियों के ये पंच विषय भरमाने वाले हैं। शास्त्रों का निर्देश है कि ज्ञानेंद्रियों में मन की पांच वृत्तियां रूपी पक्षी यदि विषय आकाश में नहीं उड़े तो जीव निर्विषय रूप फलदार वृक्ष का अमृत फल प्राप्त करे। कहने का अर्थ है कि मन इंद्रियों के कुचाल से दूर रहे। संत साहित्य में दो प्रकार के मन का वर्णन मिलता है, एक पिंडी मन, दूसरा ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब वो सिमट कर अपने केंद्र में केंद्रित होता है तब आत्मबोध का उदय होता है। साधकों संतों का कथन है कि दृष्टिधारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में मिलकर रहता है, इच्छा, चिंता, भय का नाश होने लगता है तथा पिंडी मन का चक्र भी टूटने लगता है। क्योंकि पिंडी मन से डर और चिंता का जन्म हुआ है और ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। डर पिंडी मन का पुत्र और चिंता पुत्री है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश हो गई। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उससे मिला यानी समधि के घर समधि गया। मन की इन अवस्थाओं को समझकर हम अपने आप को भक्ति में रमा सकते हैं, अपने आप को ईश्वर की ओर अभिमुख कर सकते हैं, अपने आप को संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर महसूस कर सकते हैं। आइए अपने मन को इस दिशा में लगाएं, सोचें, विचार करें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय है सतावर की आधुनिक खेती और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं आशुतोष कुमार झा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाई लोकन, आजुक दिन अपना सब चर्चा करब सतावर के उन्नत खेती के संबंध में। सतावर अथवा शतावर, जकर वानस्पतिक नाम एस्पेरेगस सेमी मोसस लिलियेसी कुल के एकटा औषधीय गुण वाला पादप है। एकरा शतावर, शतावरी, शतावरी, सतमूल आ सतमूली के नाम से सेहो जानल जात है। किसान भाई लोकन, शतावरी के पौधा भारतक हिमालय क्षेत्र में विशेष रूप से पाओल जात है। एकर खेती के लेल बलुई दोमट माटि सबसे नीक मानल जात है। शतावरी के पौध के बेसी पटौनी नहीं चाहिए। प्रारंभे में सप्ताह में

एक बेर आबाद में महीना में एक बेर हल्लुक पटौनी करबाक चाही। किसान भाई लोकनि शतावरी के खेत सँ सफल उत्पादन के लेल नीक जल निकासी वाला माटि जरूरी अछि, संगहि बलुई माटि सेहो नीक होइत अछि। किसान भाई लोकनि शतावरी के व्यावसायिक रोपण के बलुई दोमट माटि सँ भारी माटि में नहीं लगाओल जेबाक चाही, एहन ठाम से बची जतय भारी वर्षा के बाद 8 घंटा से बेसी पानि जमा रहित अछि। किसान भाई लोकनि शतावरी के खेती जलवायु परिस्थिति के हिसाब से कयल जाइत अछि। भारतक पर्वतीय क्षेत्र सब में शतावरी के खेती मार्च से मई तक कयल जाइत अछि, जखन कि मैदानी भाग में एकर खेती जुलाई से नवंबर के मध्य कयल जाइत अछि। किसान भाई लोकनि शतावरी के बीया पौध आ मुकुट के माध्यम से लगाओल जा सकैत अछि, मुदा सबसे सामान्य तरीका बीया के माध्यमे उगाओल जाइत अछि। एक हेक्टेयर में खेती के लेल लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीया के आवश्यकता पड़े छे। सतावर के खेती में बलुई दोमट माटि सबसे बेसी उपयोगी होइत अछि। एकर नीक खेती के लेल भूमि में नीक जल निकासी के प्रबंध हेबाक चाही। जतय तक संभव हो एकर खेती करिया माटि वाला भूमि में नहीं करबाक चाही, कियाकि एहन माटि में जड़ि नीक तरहे नहीं बढ़ैत अछि। एकर भूमि के तैयारी के संबंध में गप करी तो सतावर के खेती के लेल अप्रैल मई महीना में कम से कम 2 बेर खेतक जोताई नीक जका कऽ देबाक चाही। घास फूस आ खर पतवार एकरा सबके निकालि कर खेत के समतल कऽ देबाक चाही। बुआई से लगभग 15 दिन पहले 10 से 15 टन गोबर का पकलाहा खाद प्रति हेक्टेयर के दर से माटि में मिला देबाक चाही। एकर बुआई के संबंध में गप करी तो एकर खेती हेतु रोपणी में पौध तैयार कयल जाइत अछि, जकरा लेल 1x10 मीटर उठलाहा क्यारी बनाकर ओहि में 1:1:1 के अनुपात में रेत खाद माटि के मिश्रण

0: एकरा लेल 1 × 10 मीटर ओठलाहा क्यारी बनाकर ओहिमे 1:1:1 के अनुपातमे रेत खाद माटिके मिश्रण भरि देबाक चाही। तत्पश्चात अप्रैल महिनाके अंतिम सप्ताहमे बीयाके 2-3 सेंटीमीटरके गहीरमे बाउ कऽ देबाक चाही। किसान भाइ लोकनि सतावरके पौध सीधे पॉलिथीन बैगमे बीयाके बुआई कऽ कऽ सेहो तैयार कयल जा सकैत अछि। बुआई करबाक पहिले बीयाके गोबरके स्लरी बनाकर 24 घंटा भिजाकर उपचारित कयलासँ अंकुरण 100% आबैत अछि। बीया बौक 1.5-2 महीना पश्चात जाहि समय पौधाक लंबाई लगभग 15-25 सेंटीमीटर भऽ जाय ओकर रोपाईक हेतु उपयोगमे अनबाक चाही। किसान भालुकनि एहि तरहें जखन अपना सब सतावरके उन्नत खेती करब तखन नीक उपजा अवश्य प्राप्त होयत। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा से आशुतोष कुमार झा का विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं के लिए प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय था सतावर की आधुनिक खेती और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आशुतोष कुमार झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
2: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक

0: पक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नवीन कुमार से। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज है क्या?
3: डायबिटीज एक जीवन शैली रोग है जिसमें हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो है हमारे लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत सारे अंग में हमारे खराब होते हैं। मेरा यही कहना होगा कि डायबिटीज को कम नहीं आंकना चाहिए। डायबिटीज को आप ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से, रख रखाव से, सही तरीके से व्यायाम कर करके और समय पर चिकित्सीय सलाह ले करके, और जरूरत पड़े तो दवा लेने की जगह जरूरत है तो उसे लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको बचने का प्रयास करना चाहिए।
2: लक्षण
3: अगर किन्हीं भी मरीज को, अगर उनको पेशाब ज्यादा हो रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, उनका वजन गिर रहा है, उनके घाव नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको कमजोरी लग रही है, देखने में दिक्कत, अचानक से उनके चश्मे का पावर चेंज हो गया, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके घर में उनके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह किसी को भी अगर डायबिटीज है तो ऐसे लोगों को तुरंत पहले अपना जो है जांच कराना चाहिए कि उनको डायबिटीज है या नहीं है।
2: जांच हो जाए तो दवाओं की जरूरत है या नहीं? लोग कहते हैं प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है, तो प्री डायबिटिक में क्या दवाओं की कोई रोल है या फिर डायबिटीज हो जाने के बाद दवाएं कब शुरू की जाए, इसको लेकर क्या?
3: नहीं, प्री डायबिटीज में दवा की जरूरत नहीं है। प्री डायबिटीज में आप अपने आप को लेकिन डायबिटिक समझें और उसके हिसाब से खान पान और आप एक्सरसाइज परहेज ये आपको रखना है। जहां तक दवा की बात है, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज हैं तो आपको इंसुलिन लेना ही होगा क्योंकि हमारे पास तो इंसुलिन बन नहीं रहा है वहां पर। टाइप 2 में आप वेट कर सकते हैं, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका HbA1c क्या है, उसके हिसाब से फिर प्लान किया जाता है क्या अभी दवा की जरूरत है या कुछ दिन वेट कर सकते हैं।
2: टाइप 1 में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, टाइप 2 में स्राव होता है, लेकिन क्या होता है?
3: डिफेक्टिव होता है, उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन हमारे पास बनता है बट उसको काम करने के लिए नहीं दे रहा, कोई दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं जो उसको अपोज करते हैं कि तुम काम मत करो, तुम सेलुलर लेवल पर जो है शुगर को अंदर मत ले जाओ, ग्लूकोज को अंदर मत ले जाओ, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस।
2: डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जब डॉक्टर सलाह देते हैं कि अब आपको इंसुलिन लेने की जरूरत है और लोग चाहते हैं कि ये जो इंसुलिन लेने की जो स्थिति है उससे हम बचें, तो ये दोनों के बीच की जो बैरियर है, जो दीवार है, वो क्या है?
3: लोग जो समझते हैं कि इंसुलिन एक खराब चीज है, अगर 100 में 99 लोग तो लेना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण है इसका कि लोग सोचते हैं कि इंसुलिन ले लिया तो फिर आप कुछ नहीं, अब लास्ट है ये। बट लोगों को समझना चाहिए कि उनको इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ रही है।

0: तो इंसुलिन की अगर कोई मरीज है और दवा खा रहे हैं, 3-4 दवा खा रहे हैं और फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उनमें दवा काम नहीं कर रही है, वैसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ेगा। या कोई एक्यूट इमरजेंसी है, सर्जरी होनी है, आईसीयू में भर्ती है, इन्फेक्शन है, वैसे केसों में भी इंसुलिन देना पड़ता है। तो इंसुलिन खराब चीज नहीं है, इंसुलिन अच्छी चीज है, उससे जो है जिंदगी में बदलाव आता है और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बहुत हद तक रोक पाते हैं। तो इसलिए इंसुलिन लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, जब जरूरत हो तो डॉक्टर सलाह दें तो उनको जरूर लेना।
1: सावधानियां
0: तो मैं यही कहूंगा कि अगर किसी के घर में अगर मान लीजिए डायबिटीज है तो हेरिडिटरी फैक्टर होता है, या आप ओबीज हैं, सेडेंटरी लाइफ है, तो इसके लिए आपको परहेज करना चाहिए, आपके वेट को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहीं मुझमें डायबिटीज तो नहीं आ रही है। तो जीवन शैली में बदलाव ला करके और दूसरों को भी प्रेरित करके अवेयरनेस फैलाइए कि आसपास में जो है डायबिटीज के लिए जो अवेयरनेस करिए। अभी ऐसे भी नवंबर मंथ जो हम लोग डायबिटीज मंथ कहते हैं और 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज
1: डे मना रहे हैं जी,
0: तो इसमें जो है यही रखा गया है कि इलाज जो है ऐसा हो कि सब तक एक्सेस हो, कम्प्रिहेंसिव हो, अफोर्डेबल हो इलाज। तो ये सारा चीज थीम है हम लोगों का जो हम लोग करना चाहते हैं,
1: क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसको लेकर रखी भी बहुत तरह की भ्रांति है।
0: ऐसी कहीं कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन संतुलित आहार खाएं और सिंपल शुगर जो होता है, मिठाई, चीनी, ये सबसे बचें, क्योंकि वो आपके चीनी के स्पाइक को बहुत जल्दी बढ़ाएगा।
1: फल, फ्रूट्स,
0: एकदम फल खाना चाहिए और बहुत सारा फल खाना चाहिए, क्योंकि फल से जो है फाइबर मिलता है और फाइबर रिक्वायरमेंट हम लोगों की जो होती है वो हम लोग बहुत कम लेते हैं।
1: डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में डॉक्टर नवीन कुमार आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले सुनिए ये देशगान।

हनुमान की भुजाएं। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।

हनुमान चालीसा अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में।

0: अनुप जलोटा और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में मुख्य स्वर सुरेश वाडेकर का है।
1: एपिसोड नंबर 399 399।

काक फुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया। किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा सुबह 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 10:00, 11:30 पर और अपराह्न 2:30 पर। दिन के 11:00 समय होगा शास्त्रीय संगीत का, कलाकार होंगे पंडित भजन सोपोड़ी। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। दिन के 1:15 पर समय होगा आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ मराठी गीत। शाम 5:00 हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद। सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे झरोखा। प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 से।

दी गृहस्थी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। विज्ञान कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:15 पर। रात 9:30 पर समय होगा साहित्य भारती का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर सुनवाएंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि सम्बोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अंतिमा तिथिः जून मासस्य 7 पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। CBSE परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति।

0: विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% GDP विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत

0: इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला सुननिहार सब श्रोता लोकन के मोनी दिस से स्नेहपूर्वक नमस्कार। संगे प्रतिभा जी अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार मोनी जी, मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। स्वीकार करें मेरी ओर से भी स्नेह भरा नमस्कार। और मोनी, कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी हर दिन करते हैं एक सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार नीति श्लोक है, कहते हैं अनेक जन्म साम प्राप्तं ज्ञानम यस्य प्रसीदति तस्य ज्ञानस्य दातारं गुरुं विद्धि न संशय। अर्थात कई जन्मों के पुण्य के बाद जब ज्ञान प्रकट होता है तब उस ज्ञान को देने वाले को ही गुरु कहते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं।
0: एकदम असंदेह रखवा के भी नहीं चाहिए अपना सबके। प्रतिभा जी, आज 6 जून आजुक जी इतिहास के गप करी तो 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बिस्टेक नामक एकटा आर्थिक सहयोग समूह के गठन केलक उज के दिन।
1: बिल्कुल, और आज ही के दिन यदि 1939 की बात करें तो गुरुवचन सिंह रंधावा, भारत के प्रसिद्ध एथलीट का जन्म हुआ था। उन्हें 1961 में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1884 में शौक बहराइच प्रसिद्ध शायर, ये उर्दू साहित्य के एक दिग्गज और बेवाक शायर थे, इनका भी जन्म हुआ था।
0: निधन के गप करी तो 1967 में कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जे एकटा सामाजिक कार्यकर्ता छला, हुनकर निधन उसके दिन भेल रहे। 1957 में रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे, दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान, हिनकर निधन उसके दिन भेल रहे।
1: तो ये था आज के दिन का इतिहास। क्यों है आज का दिन इतिहास के आईने में खास, और इतिहास से हम सभी वापस आते हैं अपने इस कार्यक्रम के वर्तमान में। और वर्तमान की स्थिति ये है मोनी जी की, मौसम में देखने को हमेशा से ही बदलाव आजकल आ रहा है। दिन में बहुत तेज़ धूप, रात में तेज़ तूफान के साथ बारिश की बूंदें, और गर्मी से राहत तो मिलती ही है पर कुछ ना कुछ क्षति भी इससे हम सभी को भुगतना होता है।
0: सब इसी प्रतिभा जी में अपना सबक स्वास्थ्य पर असर पड़ते हैं। जार गर्म दुनू लागत है, सर्दी खांसी बुखार एमे बेसी गोटे के

0: देखिए ना, इससे आप भी प्रभावित सी हमें लग रही हैं। लग रहा है कि आप भी सर्दी खांसी से थोड़ी सी प्रभावित हो गई हैं। देखिए, बदलते मौसम में सर्दी जुकाम, वायरल एलर्जी का अटैक, ये सब शुरू हो जाता है। और इन सब का जो कहीं ना कहीं कारण हम कह सकते हैं, वजह कह सकते हैं, तो वो है कि हम सभी अपने आप पे खूब अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, कामकाज तो बहुत ही आवश्यक है मोनी जी, लेकिन कामकाज के लिए निकलने से पहले हमें क्या सावधानी रखनी होगी, या फिर हम जब आते हैं बाहर से तो तुरंत हमें पानी पीना है कि नहीं पीना है, क्योंकि धूप तेज रहने के कारण हमारे शरीर पे उसका हीट का असर रहता है, और तुरंत आके हम एकदम पानी से, प्यास से पानी के लिए बेचैन रहते हैं और आके पानी पी लेते हैं, तो ये सब तुरंत ही सर्दी खांसी का जो है कारण जाता है।
1: तैं दुआरे का तो बाहर से आ भी तो पहले सुस्ता ली करनी, तकर बाद पानी पीवी। अपन श्रोता लोग इनके कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में जो पहले मैथिली गीत के समय से हो भौगेलिस तो सुनवा दी छीन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: समय हो चला है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है मोनी कुमारी। आइए सुनते हैं मोनी से हालचाल।
4: धन्यवाद प्रतिभा जी। श्रोता लोकन हालचाल लोग आबि गेल छी हम मोनी। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय शुक्र दिन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के शपथ लेलनि। राज्यपाल सैयद अता हसनैन हुनका बिहार लोक भवन में शपथ दिएलनि। एहि अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, ग्रामीण विकास मंत्री, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, महाधिवक्ता पी के शाही आदि उपस्थित छला। समाहरणालय सभागार में शुक्र दिन अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार के अध्यक्षता में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीट बीएड 2026 के लग कर केंद्राधीक्षक के ब्रीफिंग कैल गेल। अहि में कहल गेल कि सीईटी बीएड के आयोजन 7 जून यानी रवि को भिनसर 10 बजे से दुपहरिया 1 बजे तक जिला मुख्यालय के कुल 21 परीक्षा केंद्र पर कैल जायत। स्वच्छ और शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न करेवा के उद्देश्य से सब केंद्राधीक्षक के आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा देल गेल अछि। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी के प्रवेश के अनुमति भिनसर 8:30 बजे से 10:30 बजे तक प्रवेश पत्र आ फोटो पहचान पत्र के आधार पर देल जायत। परीक्षा शुरू होय से आधा घंटा पहले परीक्षार्थी के केंद्र के भीतर प्रवेश बंद कऽ देल जायत। परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में प्रवेश करला के बाद परीक्षा कक्ष में जाय से पहले बायोमेट्रिक उपस्थिति के व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड क के एकरा बाद परीक्षा केंद्र पर 2 प्रति आननाई अनिवार्य अछि। तकनीकी कारण से कोनो परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर फोटो अंकित नै रहला के स्थिति में ओ अपन फोटो प्रवेश पत्र पर चिपका क आनि सकैत छथि आ ओहन स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र के वीक्षक उपस्थिति पत्रक आ प्रवेश पत्र में देल गेल फोटो पहचान के मिला कर करता। परीक्षार्थी अपन आधार कार्ड आननाय आ फॉर्म भरे के समय जे आईडी प्रूफ देने छथि ओ आननाय अनिवार्य हेतन। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगेवा के निर्देश देल गेल अछि। ब्रीफिंग में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, नोडल विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के लाल बाबू, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से डॉक्टर अरविंद मिलन, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से डॉक्टर राम सेवक झा आ संबंधित पदाधिकारी सब उपस्थित छला। श्रोता लोकन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज में स्नातक कक्षा में नामांकन के लिए आब कुल 1,15,000

0: 696 छात्र छात्रा के पंजीयन करेलक, जैमे से 101,997 निर्धारित शुल्क सेहो जमा कऽ देने छथि। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लेल अखन तक 10,164 छात्र आवेदन केलथि, जैमे से 8,155 निर्धारित शुल्क जमा कऽ देने छथि। गौरतलब अछि कि 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 2026-30 में नामांकन के लेल 25 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ भेल अछि, जेकर अंतिम तिथि आगामी 9 जून तक निर्धारित अछि। विलम्ब शुल्कक संग 10 से 11 जून तक आवेदन स्वीकार कयल जायत। मेजर सब्जेक्ट के छोड़ि कऽ जँ आन कोनो त्रुटि अछि तऽ आवेदक ओकर ऑनलाइन सुधार 12 से 13 जून के बीच कऽ सकैत छथि। स्नातक में नामांकन के लेल पहिल चयन सूची के प्रकाशन 17 जून को होयत। एकरा बाद चयनित कॉलेज में काउंसलिंग सह नामांकन 19 जून से 2 जुलाई के बीच होयत आ 3 जुलाई से वर्गाड़ शुरू भऽ जायत। श्रोता लोकन, स्नातकोत्तर सत्र 2026-28 में नामांकन के लेल ऑनलाइन प्रक्रिया गत 27 मई से शुरू भऽ गेल अछि, जेकि आई यानी कि 6 जून तक चलत। विलम्ब शुल्कक संग ऑनलाइन आवेदन 7 आ 8 जून के बीच स्वीकार कयल जायत। मूल विषय के छोड़ कर छात्र ऑनलाइन माध्यम से आवेदन में त्रुटि के सुधार 9 आ 10 जून तक कर सकता। श्रोता लोकन, हालचाल सुन रहल छी आकाशवाणी दरभंगा से।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोता लोकन, हालचाल सुन रहल छी आकाशवाणी दरभंगा से। काल्हि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जीविका के तत्वावधान में भैर जिला में व्यापक स्तर पर पौधरोपण, स्वच्छता आ पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर जीविका दीदी जल जीवन हरियाली के संदेश दैत पर्यावरण संरक्षण आ संवर्धन के लेल संवर्धन के प्रति लोक सब के जागरूक केलथि। जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी इंद्र संकुल स्तरीय संघ के जीविका दीदी के संबोधित करत कहलखिन कि पर्यावरण संरक्षण अपना सभक जीवन शैली के अभिन्न हिस्सा हेबा के चाही। बढ़त प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आ प्राकृतिक संसाधन के अंधाधुन दोहन से पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित भ रहल अछि। एहन में प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व अछि कि ओ बेसी से बेसी पौध लगाबित आ ओकर देखभाल सेहो सुनिश्चित करथि। सूबे के विश्वविद्यालय में स्नातक आ पीजी में एक समान नामांकन कोटा के तैयारी कयल जा रहल अछि। समर्थ पोर्टल से दाखिला में एहि नियम के पालन कयल जायत। एक समान कोटा के प्रस्ताव सब विश्वविद्यालय के दऽ देल गेल अछि। हालांकि अधिसूचना अखन जारी नहि भेल अछि। बिहार के सब विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल से ही सबटा दाखिला लेल जायत। लोक भवन दिशा निर्देश कुलपति सब के दौ देल गेल छन। अही के संग आजुक हालचाल संपन्न होइत अछि।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोता लोकन, फिर से स्वागत करी छिन कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। आब हालचाल के बाद लगले अपना सब मौसम के जानकारी सेहो ल ली छी प्रतिभा प्रीति से।
4: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 6 जून से 10 जून तक 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार में उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है। 6 एवं 9 जून को कुछ स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाओं तथा हल्की वर्षा

0: वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में अधिक से आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 65 से 70% तथा शाम में 20 से 25% रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुख्य रूप से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।
1: आप मौसम की जानकारी अपना सब ले लो संगे प्रतिभा
0: जी। जब जानकारी की बात कही है
1: आपने। हम कह रहल छी कि श्रोता लोगन के जे अपना सब कार्यक्रम संबंधी सूचना इच ओ जानकारी द दी छी।
0: श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353। एक और फोन नंबर सुन ले 0627222481। प्रसारण का समय याद रखें रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे।
1: श्रोता लोग इसे जरूर से लाभान्वित हेथिन आ कार्यक्रम जरूर से सुनथिन। आ गप सप अपना सब करी छनु है अखन जे कि
0: बदलते हुए मौसम के बारे में। हाँ। मोनी जी, तो देखिए ना, बदलते हुए मौसम में जो सावधानियों की बात हम करते हैं कि घर से निकलते हैं तो कैसे जाना है, क्या कुछ करना है, हम लोगों को अपने सेहत के विषय में सावधानी, और एक सावधानी और भी है। देखिए ना, अभी तो जो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के विकास के माध्यम से हम सभी को पहले ही 2-3 घंटे पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि मौसम में क्या कुछ बदलाव आना है, क्या कुछ होने वाला है कुछ ही समय के बाद। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ही हम घर से कदम बाहर निकालते हैं, क्योंकि किसी तरह के खतरा में ना पड़ जाएं। खास करके अभी जो आकाशीय बिजली की जो बात होती है, तो इस तरह से हाँ, जो जिसे हम कहते हैं कि ठनका या वज्रपात कहते हैं, तो ये इसकी संभावना हमेशा ही बनी रहती है इस तरह के मौसम में। तो बहुत अधिक आवश्यक है तभी हम उस जो दौरान, उस जो चेतावनी के दौरान हम बाहर निकले, वरना कोशिश करें कि कुछ समय बाद ही बाहर निकले।
1: देखियो प्रतिभा जी, अपना सबके सब गोटे के मोबाइल जिनका स्मार्टफोन छिन या जिनका बिना साधारण फोन छिन, बिना स्मार्टफोन के, सबके मैसेज द्वारा सूचना भेट जाते जेकि अगला 3 घंटा में कत कत पानी बरसे वाला कत ठनका खसे वाला तो अपना सबके जखन ठनका वज्रपात के कोनो सूचना या अन्हर बिहार के तेज हवा के सूचना मोबाइल से भेटे तखने सतर्क भ जाए। जौ कतो बाहर छी तो सुरक्षित स्थान पर चल जाए। जौ किसान भाई सब खेत में छथिन तो उस सुरक्षित जगह पर चल जेथिन। इने जे खेत में छी, ठनका खिस रहल ये, पानि तेज बरस रहल ये, एहन कखनो नहीं करब। मुदा जौ अचानक आबि जाइए पानि, ठनका खसे लागैए, तो जे सुरक्षा छै जेना कि कोनो लकड़ी के तख्ता तक छे ओहि पर ठाड़ भ जेथिन, कोनो गाछ तर ठाड़ नहीं है जखन ठनका खसै छै।
0: बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बड़ा पेड़ है उसके नीचे हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो और भी खतरे की घंटी होती है पेड़ के नीचे खड़ा होना। हरियाली के कारण और भी बिजली को आकर्षित करने की वहां पे खतरा बन जाती है।
1: बिजली के उपकरण सबसे सेहो बिल्कुल दूर एहन समय में, आ ऊंच जगह जेना कि टेलीफोन के खंभा भ गेल, बिजली के खंभा भ गेल, एतो आसमानी बिजली अपना दिस आकर्षित कर रही छी इस बिजली वाला सामान सब, तैं दुआरे उत्तर कोई व्यक्ति ठाड़ नहीं होइत सुरक्षा के कारण से। ऐसा अपना सब आकाशीय बिजली यानी ठनका से सुरक्षा कर सकै छी सब।
0: बिल्कुल, और देखिए ना, ये सब चीज अभी इतना विकास हो चुका है विज्ञान का कि हम सभी बहुत कुछ पढ़ के, बहुत कुछ देख के, या फिर मैसेज हमारे स्मार्टफोन पे, जैसा कि आपने कहा कि आने से हम सभी समझ पाते हैं, क्योंकि आज का जो युग है मोनी जी, वो एआई का युग है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हम नहीं जान रहे होते हैं तो वो हम इस माध्यम से समझ पाते हैं
1: अपने। बिल्कुल, कोनो भी अपना सबके मन में जो

0: जनसंख्या होइत अछि तऽ आब अपना सब मोबाइल में एआई सब पूछै छी। पहिले अपना सब कक्का लग बाबा लग जाइ छलहुँ पूछै लए जानकारी जे ई की होइत अछि, मुदा आब सीधा मोबाइल निकालि कऽ देखब छोट छोट धियापुता के भी जे किछु जानकारी चाही तऽ सीधा मोबाइल से पूछै छथिन।
1: बिल्कुल, इंटरनेट से पता कर लेते हैं। और आज का जो ये वर्तमान युग या नए युग कह सकते हैं वो एआई आधारित होते जा रहा है मोनी जी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एआई इंसान को सबसे इंसान की जो है ये सबसे बड़ी खोज है, जहाँ दिमाग का काम मशीन कर रही है। फोन हो, कैमरा हो, बैंक फ्रॉड को पकड़ना हो, डॉक्टर का एक्सरे पढ़ना हो, किसान को मौसम पूर्वानुमान बताना हो कि कब बारिश होने वाली है, किस मौसम में आप क्या खेती के लिए तैयारी कर सकते हैं, ये सब हो, सब एआई माध्यम से आसान सा हो गया है।
0: एकदम एकदम, बहुत अपना सबके जीवन के आसान बना देने अछि, ठीक कहि रहल छी अहाँ। आ कृषि जगत में बीमारीक उपचार में सहयोग में जेना कि एआई 30 सेकंड में कैंसर एहन बीमारी पकड़ि लेत अछि, आ संगहि जे नौकरी के क्षेत्र में छथिन तऽ एआई 1 मिनट में 1000 रिज्यूम पढ़ि लेत अछि। एआई जे छै से एकटा ट्रेनर के रूप में सेहो रहैत अछि, जे पढ़ाई के गप करी अपना सब तऽ एआई ट्यूटर बच्चा सभक क्लास सेहो लऽ लेत अछि अखन के समय में।
1: निश्चित तौर पर तो बातचीत हम सभी करेंगे कि एआई किस तरह से हमारे जीवन को आसान बनाया है या बनाते जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम सभी प्रस्तुत करते हैं अपने श्रोताओं के लिए एक प्यारा सा फिल्म संगीत।
0: बेस्त सुनित छी।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाया मोनी आपने, इसके लिए आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद से काज नहीं चले तेज अपना सबके प्रतिभा जी अपना सबके जी काज की खबर है ओहो दिस ध्यान देव के चाहिए तो जे काजक खबर है कि मेडिसिन ओपीडी में आए जे डॉक्टर की ड्यूटी लागल छे डीएमसीएच के मेडिसिन ओपीडी में शनि दिन आए डॉक्टर पीएम श्रीवास्तव डॉक्टर प्रदीप डॉक्टर कुणाल के ड्यूटी रहत ओहिठाम न्यूरो ओपीडी में डॉक्टर स्नेह कुमार झा उपस्थित रहता।
0: बहुत ही अच्छी खबर आपने दी है, लोकल अपडेट के अंतर्गत इसे हमने साझा किया है अपने श्रोताओं के साथ। और बात कर रहे थे कि एआई हमारे जीवन को किस तरह से आसान करते जा रहा है। आपने कहा था कि एक साथ एक क्लासरूम में जो शिक्षक होते हैं वो यदि 40 बच्चे को 50 बच्चे को एक साथ पढ़ा सकते हैं तो वो एआई जो है एक साथ ही हजारों बच्चे को उसे पढ़ा सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। शिक्षक के रूप में अनेकों बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन मानव शिक्षक की अपेक्षा जो अधिक तरह के स्पीड और हर बच्चे के अलग अलग स्पीड से पढ़ा सकते हैं, साथ ही आप इनसे रात में भी दिन में भी कभी भी अपना सवाल पूछकर इनसे जवाब प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल एकदम। मुदा एआई शिक्षक के क्लासरूम में चौक डस्टर आ कुर्सी टेबल आवश्यक नहीं होते प्रतिभा जी।
0: बिल्कुल
1: हाँ ठीक है कहलूँ जी कि 24 घंटा सातों दिन हर समय उपलब्ध रहते एआई संग ही होमवर्क चेकिंग आ बेसिक सवाल में लागे वाला समय से हो बचत होते
0: निश्चित तौर पर। और समय बदलने के साथ साथ जो कहते हैं ना कि स्मार्ट युग, तो इसमें स्मार्टनेस धीरे धीरे हमारे जो जमाना है उसमें आ रहा है। तो हर क्षेत्र में जैसे कि एआई हम बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो एआई कमजोर बच्चों को बार बार समझाए और होशियार को तुरंत अगले लेवल का सवाल दे देता है, अर्थात हर बच्चा के लिए अगले स्पीड। इसके साथ रिपोर्ट कार्ड बनाना, कॉपी चेकिंग करना, अटेंडेंस बनाना, लेसन प्लान जो होता है, ये सारे काम जो शिक्षक ऐसे ही बैठ के करते हैं जिनमें कि बहुत अधिक समय और परिश्रम लगता है, तो वो सब इन सब कामों को एआई जो है वो कुछ ही मिनट में या कह सकते हैं कि सेकेंडों में ही कर देता है। मोनी जी
1: बिल्कुल एकदम अपना सबके सेकेंड में काज करवा के जे छै एआई के भाषा का कोनो दीवार नहीं होते प्रतिभा जी। भोजपुरी में सवाल पूछब, मैथिली में, विज्ञान में तत्काल उत्तर वही भाषा

0: में अपना सबके प्राप्त भ जाइत अछि, जेकि गामक बच्चा लोकनि के बुझबा मे बहुत सुविधा होइ छनि, आसानी से ओ सब जानि पाबैत छथि, क्योंकि जही भाषा में पूछै छथि ओहि में जवाब भेटै छनि। आ शिक्षक के क्लास वर्क वाला काज AI कऽ दैत अछि, तऽ एकटा शिक्षक AI 30 के जगह पर 100 बच्चा के मैनेज कऽ सकैत अछि समय पर, यानि कि बेसी बच्चा के AI ओतबे समय में पढ़ा सकैत अछि, जानकारी ज्ञान दऽ सकैत अछि।
1: निश्चित तौर पर। और आपने कहा कि भाषा की कोई दीवार नहीं होती है, तो आप जिस भाषा में भी AI से पूछते हैं अपना सवाल को, हाँ, टाइप करते हैं, तो उसी भाषा में आपको यहाँ पे जवाब मिलता है, क्योंकि जो AI के पास हर तरह के भाषा से डेटा जो है वो सेव रहता है, और इस तरह से बहुत ही आसानी होती है कि आप जिस तरह से समझ पाएँ, एकदम आसानी आसान भाषा में समझ पाएँ, तो इस तरह से आप अपने जो आपके जो डाउट हैं, जो आपके मन में जो सवाल हैं, उसका आपको आ पाता है जवाब। और फिर इस तरह से इस मौके पर जो हम सभी कह सकते हैं इस बात को लेके कि AI आधारित जो शिक्षक हैं वो जो हम सभी को, हमारे बच्चे को बहुत अधिक जानकारी तो देते हैं, लेकिन जो शिक्षक क्लासरूम में होते हैं या फिर घर में जो हमारे समझाने वाले, हमारे बच्चे को समझाने वाले होते हैं, वो इस तरह से जो मानसिक रूप से पढ़ना होता है, आँख देख के जो बच्चे को समझना होता है कि भाव जो कि इस बच्चा के लिए क्या ज़रूरी है अभी, ये क्या कभी ऐसा तो नहीं कि इसको शारीरिक रूप से कोई परेशानी है या किसी बात का इसे दुख है या चिंता है या परेशानी है, तो ये चीज से AI को कोई मतलब नहीं है।
0: जेना कि धिया पुता के ध्यान भटकित छे, उ कतो देखित छे, पढ़ रहल छे, आ ध्यान क्लास के बाहर छे, तो AI के इसे कोनो लेना देना नहीं रहित।
1: आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको मिल गया, बस बात खत्म है। AI कभी भी ज्ञान के साथ मोनी संस्कार या वैल्यू नहीं समझ सकता है। AI यह तो बता सकता है कि गांधी जी कौन थे, पर उनके जीवनी को या उनके व्यावहारिक रूप से अपनाना कैसे चाहिए, उनमें सत्य बोलने की क्या भावना थी, किस तरह से वो अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को रखते थे, ये तो एक शिक्षक ही समझा पाता है। AI यह तो बता सकता है कि फास्ट फूड बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसे नहीं खाना चाहिए, पर शिक्षक जो होते हैं वो अपने विद्यालय के बच्चों के टिफ़िन डिब्बे को भी चेक करते हैं और उन्हें ऐसा खाने से रोकते हैं और कहते हैं कि आज तो ले आ चुके हो, कल से ऐसा टिफ़िन लेके नहीं आना। तो ये सब चीज़ तो बहुत ही फ़र्क है AI में और एक जो मानव शिक्षक हैं उनमें, लेकिन आज का जो युग है वो परिवर्तित तो हो रहा है। तो देखिए ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जो अच्छाई है उसे हम सभी ग्रहण करें और जिसमें भी जो कुछ भी बुराई नजर आती है हमें उसे हम ग्रहण ना करें,
0: ये छोड़ कर अपना सब जीवन में आगू बढ़ी, क्योंकि नैतिकता के ज्ञान तो AI दे सकते है, मुदा नैतिकता के पाठ जो इस धियापुता के सीखेवा के ओ अपना सबके AI नहीं देते।
1: हाँ, एक जो मानव शिक्षक जो होते हैं वो आपके भावना को समझ सकते हैं, आपके बच्चे को कि क्या उसमें दिक्कत है, किस तरह से उसे हैंडल करना है, जिस तरह से कि हम माता पिता, देखिए ना मोनी जी, जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं और उन्हें किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, कभी कान में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, तो हम जो माताएँ बहनें होते हैं, दादी होती हैं घर में, नानी होती हैं, वो सब उसके हाव भाव से ही पकड़ लेती हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ है, और बच्चे भूखे हैं यदि रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, अभी पानी पीना है कि अभी दूध उन्हें पिलाना है, ये सभी हम सभी उनके हाव भाव से पकड़ते हैं। तो ये सब चीज़ तो मनुष्य से ही, मानव से ही संभव है, AI से ये सब हो नहीं सकता है।
0: अपना सबकी जखन नव नव माँ बनी छी तखन नहीं समझ में आबित रही छे जे कि धिया पुता बच्चा किया कैन रही है, और जखने दादी नानी आवे छथिन, अच्छा बौआ के पेट में गैस भर गेले, कनी थपकी दियो ते एकरा
1: बिल्कुल
0: गोदी में लको, आ तुरंत में धिया पुता ठीक भ जाइत अछि, ई सीख जे छे अपना सबके AI नहीं दे सकते।
1: हाँ, कि क्या खाना है, नहीं खाना है, हम सभी जो सवाल पूछते हैं तो टाइप करके या फिर ऐसे भी बोल के, तो हमें AI से पता चल जाता है, वो जवाब देता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन हमारे जो घर के लोग होते हैं वो बहुत ही बेहतर ढंग से हमें समझा पाते हैं, व्यावहारिक रूप से खास करके।
0: एकदम फास्ट फूड के गप के लो प्रतिभा जी, तो निन्ना भुटका लोकनी के पिज्जा बर्गर जते बाहरी चीज हुई छे, फ्रेंच फ्राइज समोसा

0: सा कोल्ड ड्रिंक ई सब बड़ पसंद रहित छिन, कहित छथि एहि के बड़ स्वाद लागत अछि।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा तो वो कहते हैं और ऐसा सुनने को मिलता है। पर देखिए ना, जुबान को जो मजा देता है वो शरीर को सजा देता है, अर्थात कि पिज्जा बर्गर समोसा आदि देखकर बच्चे ही नहीं आपके भी मन में, हम सोच रहे हैं कि खाने का मन करता ही होगा, बड़ों के मन में भी ऐसा होता है कि कभी हाँ चटपटा सा हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये सब अनेक कारणों से हानिकारक होते हैं। एक तो यह है कि यह सब मैदे से बना होता है मुनि जी, और नमक चीनी ज़्यादा होने के कारण, मिर्च मसाला ज़्यादा रहने के कारण कब्ज, पेट खराब, किडनी खराब, बीपी कम और कम उम्र में हो जाता है बीपी की परेशानी, डायबिटीज आदि का खतरा फास्ट फूड के कारण ही तो बढ़ जाता है।
0: बहुत रास जो शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या वो सब अपना सब के
1: इसके साथ ही कह सकते हैं, मोटापा हुआ, ओवरवेट जैसी समस्याएं,
0: और जखनी मोटापा बढ़े तखने सब बीमारी की शुरुआत हो जाते अपना सब के। फास्ट फूड के प्रयोग सब बच्चा लोकनी के दिमाग सुस्त सेहो भ जाइत अछि आ पढ़ाई लिखाई में पूरा मोन नहीं हुनका सबके लागै छै, संगे ही हुनक सबके सोच बहुत कमजोर भ जाइत अछि आ याददाश्त एकदम से कमजोर भ जाइत छै ई फास्ट फूड सब खेला से।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कम उम्र में घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि मोनि जी फास्ट फूड खाने वाले बच्चों में जो दूध पीना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बहुत अधिक कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं या फिर ऐसा कोई पेय पदार्थ होता है वो सब पीना पसंद करते हैं, तो इस तरह के बच्चे में ये सब चीज़ खतरा बढ़ जाता है।
0: जखने दूध नहीं पी छथिन आज स्वास्थ्य वर्धक चीज नहीं खाए छथिन तो धियापुता में चिड़चिड़ापन आ तामस बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये फास्ट फूड आ चटपटा सब खेला से नीक तो लागे छे स्वाद में, लेकिन हर तरह से हानि नहीं करे थे अपना सब के। बेसी चीनी, बेसी मैदा, नून, तेल ये सब खेला से जेना कि अब मोमोज सब भ गए सब कते खराबी करे थे मैदा सब बना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और बार बार सर्दी खांसी, पेट खराब होना, और सबसे बड़ी बात कि जंक फूड खाने से खाने वाले बच्चों का इम्यूनिटी जीरो हो जाता है,
0: रोग प्रतिरोधक
1: क्षमता उनमें कम हो जाती है और इसीलिए वे बार बार बीमार हो जाते हैं। दो मिनट में तैयार होने वाली मैगी, मोमोज, पिज्जा या फ्रेंच फ्राई ये सब निश्चित रूप से बच्चों के लिए खतरनाक होता है, इसे समझना होगा। देखिए बच्चे को ही नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं मोनि जी, उन्हें जो स्वादिष्ट लगता है, जो उनके जीव के लिए अच्छा होता है, वह अच्छा लगता है वही खाना चाहते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हम सभी की होती है, हमारी आपकी होती है, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बच्चों की, जो माँ है, जो दादी हैं, जो घर में घर के लोग हैं, वो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनके स्वाद के अनुसार भी बनाए और जो हानिकारक ना हो इस तरह के। कभी आप आलू पनीर टिक्की बना सकते हैं और कभी बर्गर ब्राउन ब्रेड में दे के आप बना सकते हैं,
0: जो कि हरियर तरकारी सलाद सब
1: आप रख सकते हैं। साथ ही कभी कभी पैकेट के पीछे हम सभी नहीं देखते हैं कि पैकेजिंग इसका कब हुआ है और वो खाना भी खा लेते हैं, तो इसे सावधान रहने की हमारी ही आवश्यकता होती है।
0: एक्सपायर्ड हो जाए बिल्कुल भी खा लीजिए
1: बिल्कुल, और हमारे बच्चे जो टिफिन ले जाए उसमें फ्रूट चाट हम रखें, पराठा, सब्जी, इडली आदि रखें, जो उनके सेहत के साथ साथ उनके जीव को भी अच्छा लगे।
0: जेना कि दलिया अपना सबके लिए स्वास्थ्य वर्धक अछि प्रतिभा जी, मुदा धियापुता खाय नहीं चाहे छथिन, तो अहाँ दलिया के मीठा दलिया बना सकै छी, हुनका सबके अवश्य नीक लागतनि जे मीठ पसंद करै छथिन हुनका सबके लेल। चीनी के प्रयोग अपना सबके करे के नहि अछि तऽ शक्कर के इस्तेमाल कऽ सकै छी, व्यवहार कऽ सकै छी, अपना सब मिठास के संग संग स्वास्थ्य सेहो अपना सबके नीक रहत।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम सभी बात किए कि हमारे बच्चे जो पसंद करते हैं फास्ट फूड खाना, तो इसकी क्या हानियां हैं ये सभी हमने अभी बातचीत के माध्यम से जाना, और ये सब जान रहे होते हैं हम सभी, ऐसे भी घर में भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो इतनी बातों को नहीं समझते हैं बच्चों को छोड़कर।
0: बिल्कुल
1: देखिए, दो मिनट में मैगी बन जाता है तो हम आप घर में टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं और अपने बच्चे को दो मिनट में तैयार होने वाले मैगी बना के दे देते हैं, तो इस तरह से हमारे जो समय की बचत होती है, लेकिन हमारे बच्चों की सेहत बहुत ही बिगड़ता है इन सब चीज़ों से। तो बच्चे तो बार बार जिद करेंगे क्योंकि उन्हें वो चटपटा खाना पसंद है, हम सभी को ही उन्हें प्यार से समझाना है और उनके लिए क्या आवश्यक है, और माँ जो होती है वो सब

0: से बड़ी शिक्षिका कह सकते हैं, अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी गुरु होती हैं,
1: मार्गदर्शिका से हो कह
0: बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। और कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु कुम्हार शिश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर मन को हाथ दे बाहर बाढ़े चोट। तो जो गुरु होते हैं सही मायने में, वो AI नहीं हो सकता है मुनि जी, गुरु जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो अपने बच्चों की जो अंदर जो बुराई है उसे, उसके चरित्र निर्माण रूपी जो जो कुम्हार होते हैं वो गुरु और शिष्य एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, जिसके कमियों को अवगुण को डांट कर या प्यार से गुरु बाहर निकाल देते हैं और उस बच्चों के अच्छे चारित्रिक निर्माण होता है। तो माँ तो सबसे बड़ी गुरु होती है कहते हैं ऐसा। और कार्यक्रम में हम सभी आगे बढ़ते हैं, समय के साथ हम सभी को चलना होता है
1: और तो मनोरंजन दिशा हो चली।
0: हाँ, तो आइए चलते चलते सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ अब आज के इस अंक से लेते हैं विदा। तो प्रतिभा प्रीति को
1: संगे मोनी के
0: दीजिए विदा।
1: नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
4: जनकपुर जाने के लिए आए,
3: कभी खरीदारी भी करते हैं।
5: हिंदी सामान किनना,
3: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
6: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
3: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
7: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
3: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी,

0: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
1: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

अपनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत नव आकाशवाणी। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:00।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा

0: 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य

0: उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
2: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
3: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,70,000.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इक्तसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली ज़िलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की ज़बरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी तेज रफ्तार इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगा।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और भारत माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ इक्तसादी तरक्की को मुतवाजन बनाकर इस रास्ते पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले जनाब मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया कि भारत की काबिले तजदीद तवानाई की 250 गीगावाट की सलाहियत में से गुजरात अकेले ही 50 गीगावाट फराहम करता है जो भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई का एक अहम पांचवां हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अमोनिया की तरफ मुंतकिल होने में एक बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है जो तवानाई के मैदान में खुदकफील बनने के लिए लाजमी है।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ

0: चीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
1: सूरत में यकसर तब्दीली के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहर के जज्बे और इसकी सरसब्ज शहर में मुंतकली की तारीफ की। उन्होंने सूरत के सर्कुलर आबी मईशत के मॉडल और कचरे से दौलत बनाने की पहल को सराहा जो पिछले 12 साल में एक अवामी तहरीक बन गई है। सूरत पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले हजीरा का दौरा किया और सनअती नीज बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जाब्तों को मजीद आसान बनाया है जिनके तहत सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां FPIs सरमाया लगाती हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क का मकसद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए सरमायाकारी को मजीद आसान बनाना और अमल दरामद की पेचीदगियों को कम करना है। तफसील मुंबई के हमारे नामनिगार से।
2: इस ताज़ा फ्रेमवर्क के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां सरमाया लगा रही हैं उन्हें मजीद सहूलत दी जाएगी क्योंकि बहुत सी बंदिशें ख़त्म कर दी गई हैं। RBI ने आम और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौजूदा ज़ुमरों को मरकजी सरकारी तमस्सुकात और रियासती सरकारी तमस्सुकात को एक दूसरे में ज़म कर दिया है। माली साल 2026-27 के लिए मरकजी सरकारी तमस्सुकात के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपये पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपये तय कर दी है। रियासती सरकारी तमक्सात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपये और 1,64,242 करोड़ रुपये भी तरतीब मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: ज़िरात और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 9,42,000 से ज़्यादा किसान जून के महीने तक खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं जिसकी वजह से कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल की यह मुहिम एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है। इस मुहिम का आगाज़ ज़िरात और किसानों की बहबूद की मरकजी वजारत ने किया है जिसका मकसद कीमियावी खादों के मुतबादल इस्तेमाल को फ़रोग देना, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखना और मुस्तकिल ज़रई तौर तरीक़ों की हौसला अफजाई करना है। एक रिपोर्ट।
3: ज़राअत की वजारत ने बताया कि इस मुहिम के तहत अभी तक 17,800 से ज़्यादा अब्बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जा चुके हैं जिनमें तकरीबन 6,98,000 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा तकरीबन 3,700 तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किए गए जिनमें 1,57,000 से ज़्यादा किसानों को कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखने और साइंसी ज़राअत की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। वजारत ने बताया कि इस तरबियत का मकसद मिट्टी की तवील मुद्दती जरखेज़ी और कीमियावी खादों पर ज़्यादा इन्हिसार में कमी लाना है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE के मुताबिक उसने तलबा के मफाद के खातिर ये फैसला किया है कि ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख का सबूत थी। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। वजीर खारजा डॉक्टर S. जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों फरीक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे जिसका मकसद अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाना है जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम के दरमियान रवाबित शामिल हैं। जनाब खनल अभी भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत के पास नेपाल के साथ एक वसी तर एजेंडा है जो तरक्याती तआवुन और आवाम के दरमियान रवाबित तिजारत और सरमायाकारी तक मुहित है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत

0: اوپری کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 9,42,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے، وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کا یہ پٹنہ کیندر ہے، میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
2: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
3: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कहाँ चलती है?
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.8% की दर से बढ़ रही है। दमन में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की इस गति पर हर भारतीय को

0: गर्व का अनुभव हो रहा है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकट के दौर में भी भारत मजबूती से खड़ा है, इसका श्रेय देश की 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक प्रयास को जाता है। उन्होंने भरोसा दिया कि देश सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के रास्ते पर संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला बताया है। श्री कुशवाहा ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम तय किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का शासनकाल देश में विश्वास, विकास और जन कल्याण का समय रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 12 साल बेमिसाल अभियान चलाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं की अब ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण और क्रियाशीलता पर्यवेक्षण प्रणाली CGRM पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस एकीकृत व्यवस्था से लोगों को राज्य की योजनाओं की पूरी जानकारी एक स्थान पर मिलेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के मामले में राजस्व सह कानून को अधिकारी सोनी कुमारी को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 8 अन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 32 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह सख्त है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को केंद्रों पर जाने के लिए सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को 35 जिलों के 331 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि

0: बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में मौजूदा खामियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें सीमा पार से नकली नोट, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगानी होगी। गृहमंत्री ने कहा कि देश में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है? इधर तो
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। उत्तरी भागों में बारिश हो रही है और कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे दरभंगा, अररिया, मधुबनी और सुपौल संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज सुबह हल्की बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है और इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में परिवर्तन की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी की स्थिति बनी हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान।

0: रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश भर में वज्रपात और तूफान पर अध्ययन करने के लिए अधिसूचित किया गया है। केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पटना केंद्र को वज्रपात, आंधी तूफान और मौसम प्रणालियों के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वी भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां प्री मानसून और आंधी तथा वज्रपात की घटनाएं बार बार होती हैं। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर कल से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है।
1: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग

0: रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वी भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां प्री मानसून और आंधी तथा वज्रपात की घटनाएं बार बार होती हैं। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर कल से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है।
1: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
0: राज्य में 12 घंटे बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। आज शाम 5 बजे से कल सुबह 5 बजे तक ये बंदी लागू रहेगी। नेटवर्क मेंटेनेंस के कारण NBPDCL और SBPDCL के अनुसार ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। कंपनी ने लोगों से जरूरी बिल भुगतान और रिचार्ज पहले ही करने की अपील की है। पटना एम्स में कार्यरत कनीय प्रशासनिक अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को पुलिस ने एक महिला कर्मचारी और उसकी पुत्री से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पटना साइबर पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय की एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के आरोप में पश्चिम बंगाल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कनीय अभियंता धरनीधर राय को 4 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जनता दरबार में 68 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र के नबीनगर ककरार में हथियारबंद अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 18 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। सीवान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विवेक कुमार को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के सचिव ने उन्हें ये सम्मान दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव पर लिखा है, भाजपा और जदयू के 8 MLC प्रत्याशी घोषित, जदयू ने 3 अति पिछड़ा तो भाजपा ने 2 को दिया मौका। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, राज्य के 50 लाख घरों में सरकार लगाएगी मुफ्त सौर ऊर्जा यंत्र। दैनिक भास्कर लिखता है, मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, 12 जुलाई को होंगी रिटायर्ड। प्रभात खबर ने लिखा है, खानसर पर FIR दर्ज, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन

0: प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं,
3: हिंदी में वाला है सामान किनना लाए।
1: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
4: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
5: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर। भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै
2: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नै हैत त खेती नै हैत आ खेती जो नै हैत उपजा नै हैत त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स
1: ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: alelo, man alelo. तोता ले लो, मैना ले लो।
1: ए तोता वाले, इधर आओ, इधर।
2: लो, आ गया। क्या लोगे, तोता या मैना?
1: तोता भी और मैना भी। तुम इसी जगह ठहरो, मैं अपनी मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी।
3: क्या बात है राजू बेटे?
1: मम्मी, बाहर आओ ना, तोता वाला है।
3: तोता वाला है? कौन तोता वाला?
1: बाहर आओ ना।
3: अच्छा बाबा, आती हूँ।
1: मम्मी, मुझे तोता खरीदो ना, मैं इसे खेलूंगा।
4: छी, तुम मिट्टी के इस खिलौने से खेलोगे?
1: हाँ मम्मी, मैं इसे खेलूंगा। ये तोता मैना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खरीदो ना।
4: नहीं राजू बेटे, ये खिलौने तुम्हारे

0: बैग नहीं है, चलो अंदर चलो।
1: नहीं, मैं खिलौने लूंगा, मैं खिलौने लूंगा।
2: जब बच्चा जिद कर रहा है तो खरीद दीजिए, सिर्फ 8 आने का तो है।
0: चुप रह, ये किसी गरीब का बेटा नहीं है जो मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। इसका बाप ऑफिसर है, ऑफिसर। चल दफा हो यहाँ से। राजू बेटे चलो अंदर चल। तो
1: नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
0: अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं आज ही तुम्हारे पापा से प्लास्टिक का खूबसूरत और कीमती तोते मैंने मंगवा दूंगी। चलो चुप हो जाओ, चलो बेटे चुप हो जाओ।
2: दौलत पर इतना घमंड।
3: तोता ले लो मैना ले लो।
4: ए तोता मैना वाले, इधर आना। इधर
2: अभी आया। क्या लोगी मुन्नी, तोता या मैना?
4: मैं तो तोता लूंगी। हरे रंग का ये तोता मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने का है ये तोता?
2: 8 आने का।
4: 8 आने का?
2: हाँ 8 आने का। लेना है?
4: हाँ हाँ लेना है। अगर नहीं लेना होता तो तुम्हें बुलाते क्यों? जरा ठहरो, मैं तो अपनी माँ को बुलाती हूँ। माँ, ओ माँ, जरा बाहर आना।
5: का बात है रे मंजू, काहे को चीख रही है?
4: तोता वाला आया है माँ, तोता वाला। बाहर
5: तोता वाला? कौन तोता वाला?
4: ओफ माँ, बाहर आना।
5: अच्छा अच्छा आती हूँ।
4: माँ मुझे ये तोता खरीद दो।
0: तुझे ये तोता खरीद दूँ? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है?
4: मैं जब भी तुम्हें खिलौने खरीदने को कहती हूँ तुम यही कहा करती हो। तुमने कभी मुझे खिलौने खरीद कर नहीं दिए। आज मैं ये तोता जरूर लूंगी, मैं ये तोता जरूर लूंगी।
0: अच्छा अच्छा, ये तोता कितने का है भैया?
2: 8 आने का।
0: 8 आने का? मिट्टी का ये तोता 8 आने का? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। नहीं नहीं तोते वाले, जाओ, मैं ये तोता नहीं खरीद सकूंगी। मैं गरीब औरत हूँ, 8 आने मेरे लिए बहुत होते हैं।
4: नहीं, मैं ये तोता लूंगी, तुम मुझे ये तोता खरीद दो। आज तक मैंने कभी भी खिलौने से नहीं खेला। मुझे ये तोता खरीद दो माँ, मुझे ये तोता खरीद दो।
0: तेरे भाग में खिलौने से खेलना लिखा होता तब मैं खेलती। फू, तो नामुराद पैदा हुई है। तभी तेरे पैदा होते ही तेरा बाप मर गया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया। चल हट, मुझे जाने दे, अभी मालती देवी के घर का सारा काम बाकी है।
4: नहीं हटूंगी, मैं ये तोता लूंगी, मैं ये तोता लूंगी।
0: कह दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये तोता नहीं खरीद सकती।
4: नहीं नहीं, मैं ये तोता लूंगी, मैं ये तोता लूंगी।
0: देख मंजू, जिद न कर वरना पिटाई शुरू कर दूंगी। हाँ
2: आप भी अजीब औरत है, सिर्फ 8 आने के खिलौने के लिए आप इसे इस तरह रुला रही हैं और इसका दिल तोड़ रही हैं।
0: तुम दिल की बात करते हो भैया और मैं पेट की सोच रही हूँ। 8 आने में कुछ पैसे और मिला दूंगी तो एक पाव आटा आ जाएगा और इस आटे से हम दोनों के पेट भर जाएंगे। अब तुम ही बताओ कि मिट्टी का ये खिलौना जरूरी है कि आटा?
2: हाँ आप ठीक कह रही हैं, हम गरीब लोग अपने पेट की आग तो बुझा ही नहीं पाते, दिल की इच्छा कहाँ से पूरी कर सकते।
0: चल मंजू चल, देर हो रही है।
2: मंजू बेटी इधर आओ, लो ये खिलौने और अपने आंसू पूछ लो।
0: नहीं नहीं मंजू, ये खिलौने नहीं लेगी।
2: क्यों नहीं लेगी? मैं ये खिलौने अपनी तरफ से दे रहा हूँ।
0: लेकिन तुम मुफ्त ये खिलौने क्यों दे रहे हो?
2: इसलिए कि इस गरीब का दिल न टूटे। यूँ तो गरीब बच्चों के दिल हर कदम पे टूटते रहते हैं, लेकिन इस मामूली से खिलौने के लिए किसी गरीब बच्चे का दिल टूट जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जाओ मंजू जाओ खेलो।
4: तुम कितने अच्छे हो खिलौने वाले, कितने अच्छे।
3: एक तोता ले लो मैना ले लो, एक तोता ले लो मैना ले लो।
6: अरे अरुण, तुम इस हाल में? अरे तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं?
2: तुम शायद जफर हो ना?
6: हाँ यार, मैं जफर हूँ, जफर तुम्हारा दोस्त। कॉलेज के अपने इस दोस्त को बिल्कुल भूल गए?
2: किसी को भूल जाना इंसान के अपने बस की बात नहीं है दोस्त। वक्त और हालात इंसान को भूल जाने पर मजबूर कर देता है। और फिर ये कि हमारी मुलाकात भी तो 10 साल के बाद हो रही है।
6: हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन मिट्टी के ये खिलौने कांधे पर लाते, गली गली फेरी, आखिर ये सब क्या है?
2: जीने की सजा। तुम मुझे देखकर ये अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि इंसान को जिंदगी कितनी प्यारी है। वो जिंदा रहने के लिए सब कुछ करता है।
6: हाँ यार, जिंदगी है ही अजीब गरीब चीज, लेकिन तुम्हें

0: हाल में देखकर मुझे बेहद दुख हो रहा है।
1: ये तुम्हारी मोहब्बत है दोस्त, वरना मेरी तरह बहुत से लोग इस देश में इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये देखकर किसी को दुख नहीं होता। अच्छा जाने दो, तुम अपने बारे में बताओ, इन दिनों कहाँ हो और क्या कर रहे हो? अरे यार, सूट बूट देखकर तो ये अंदाजा हो रहा है कि तुम कोई लखपति हो या फिर बहुत बड़े ऑफिसर।
0: अरे नहीं यार, अभी मैं अफसर नहीं हुआ हूँ, अभी तो एक मामूली क्लर्क हूँ, लेकिन हाँ लखपति जरूर हो गया हूँ।
1: मामूली क्लर्क हो और लखपति हो गया हूँ, यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई।
0: बात दरअसल ये है अरुण, कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, और तुम तो जानती हो कि आजकल रिश्वत का जमाना है।
1: हाँ यार, इसी रिश्वत के कारण तो मैं आज तक बेकार हूँ, और नहीं चाहते हुए भी ये खानदानी पेशा अपनाए हुआ हूँ। तुम इस मामले में बहुत खुशनसीब साबित।
0: अरे नहीं यार, खुशनसीबी तो तब होती जब बगैर रिश्वत दिए मुझे नौकरी मिल गई होती। शायद तुम यकीन न करो, इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 2 बीघे खेत बेचकर पूरे 20,000 रुपए अपने एक अफसर को रिश्वत दी थी।
1: यार इसमें यकीन न करने की कौन सी बात है, आजकल बगैर रिश्वत या पैरवी के नौकरी मिलती कहाँ है? अगर मेरे पास भी पैरवी होती या रिश्वत देने के लिए रुपए होते तो तुम मुझे ऐसी हालत में न देखते।
0: बात तो दुरुस्त है, लेकिन रोजगार भी बुरा नहीं अगर ढंग का हो।
1: ढंग का हो तब ना, तुम इसे रोजगार कहते हो जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती।
0: अरे हाँ यार, याद आया, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम चल रही है, तुम इसमें अप्लाई क्यों नहीं करते? फिर ढंग का कोई रोजगार कर लेना, जिंदगी आराम से गुजरने लगेगी क्यों?
1: तुम तो इस तरह कह गए जैसे अप्लाई करते ही लोन मिल जाता। अरे यार, वो भी बगैर पैरवी या रिश्वत के नहीं मिलता, मैं कोशिश करके थक गया हूँ।
0: वाकई अजीब जमाना आ गया है, अब तो बगैर पैसे के आदमी एक कदम नहीं चल सकता। खैर तुम इसकी फिक्र न करो, मैं ट्रांसफर होकर इसी शहर में आ गया।
1: अच्छा,
0: मैं तुम्हारी नौकरी के लिए पूरी कोशिश करूंगा अरुण। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, किसी दिन तुम्हारे घर पर आऊंगा तो फिर बात होगी।
1: ठीक है यार, जाओ।

0: पद्मा, ए बेटी पद्मा,
1: क्या है माँ?
0: अरे सवेरा हो गया, उठ के बाहर के नल से पानी तो ले आ, और हाँ मिट्टी भी गूंद दे।
1: अच्छा माँ, मैं उठती हूँ।
0: अरुण, ए अरुण।
2: क्या है माँ?
0: आज उठेगा नहीं क्या?
2: क्या सवेरा हो गया?
0: हाँ बेटे, अब तो धूप भी निकल आई।
2: अरे धूप निकल आई, और मैं अब तक सोया हुआ हूँ।
0: हाँ रे, कई बार सोचा कि तुझे जगा दूँ, लेकिन ये सोच कर कि तू खुद ही जग जाएगा, नहीं जगाएगा। लेकिन जब धूप निकल आई और तू नहीं जगा, तो मजबूरन ही जगाना पड़ा।
2: ठीक किया माँ, तुमने मुझे जगा दिया, वरना दिन भर मैं सोया ही रह जाता।
0: क्यों, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
2: हाँ माँ, अंदर से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जी चाह रहा है कि चुपचाप पड़ा रहूं।
0: दिन भर की मेहनत और सेवा सत्कार कुछ भी नहीं, बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे मैं तो कहते कहते थक गई कि बेटा ब्याह कर ले, बहू ले आ, पर तू है कि मेरी सुनता ही नहीं।
2: अरे माँ, तेरी बहू के आ जाने से क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा?
0: बीमार पड़ेगा तो वो तेरी सेवा तो करेगी।
2: मुझे सेवा की जरूरत नहीं है माँ, जब तक मैं पद्मा का ब्याह नहीं कर देता, अपना ब्याह भी नहीं करूंगा, ये मेरा अटल फैसला है।
0: हाँ रे, अब तो वो भी जवान हो गई है, उसको देखती हूँ तो कलेजा कांप जाता है, ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ उसका ब्याह कैसे होगा।
2: उसकी चिंता तू काहे को करती है माँ, अभी मैं जिंदा हूँ। पद्मा, ओ पद्मा।
1: भैया,
2: मेरे लिए एक प्याली चाय बना दे, और हाँ पतले में पानी लाकर दे दे, कुछ तोते मैंने बना लूँ।
0: क्या तू फेरी करने जाएगा?
2: हाँ माँ, अगर नहीं जाऊँगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा?
0: लेकिन तू तो कह रहा था कि।
2: तू मेरी चिंता ना कर माँ।
1: भैया।

0: पतले में पानी रख दिया है।
1: ठीक है पद्मा, जरा दरवाजे पे जाकर देख तो कौन आया है।
0: अच्छा भैया।
2: अरुण जी इसी मकान में रहते हैं ना?
0: जी हाँ, आप कौन हैं?
2: मेरा नाम जफर है। अरुण घर में हैं?
0: जी हैं। आप जरा ठहरिए, मैं उन्हें भेज देती हूँ।
2: अच्छा।
0: भैया एक साहब आए हैं, उनका नाम जफर है, तुमसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा अच्छा, जफर आया है। अरे पगली, वो कोई साहब नहीं, मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त राजा, उसे अंदर बुला ला।
0: भैया ने आपको अंदर बुलाया है, आइए।
2: अच्छा। अरे अरुण, तुम तोते मैंने बना रहे हो क्या?
1: हाँ यार, नहीं बनाऊंगा तो देखूंगा। आओ आओ बैठो, ऐसे चारपाई पर बैठो।
2: हाँ हाँ बैठता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन पद्मा है ना?
1: हाँ।
2: जब इतनी सी थी तब देखा था, अब तो काफी बड़ी हो गई।
1: हाँ, तुमने 10 साल पहले उसे देखा था।
2: हाँ। अच्छा तुम्हारी माँ और बीवी कहाँ है?
1: माँ पड़ोस में गई है और बीवी अभी मैंने शादी की ही नहीं।
2: अच्छा, तो कब करोगे, बुढ़ापे में?
1: यार गरीबों की जवानी क्या और बुढ़ापा क्या, जब तक ढंग का कोई काम नहीं मिल जाता और पद्मा की शादी नहीं कर देता, अपने बारे में सोच भी नहीं सकता।
2: लेकिन अब तो सोचना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी नौकरी होने वाली है।
1: मेरी नौकरी होने वाली है? अरे तुमने कोई सपना तो नहीं देखा है?
2: मैं सपने देखने का आदी नहीं हूँ अरुण, मैं तो जो कुछ भी देखता हूँ खुली आंखों से देखता हूँ। ये लो, ये फॉर्म ले लो और भरकर कल तक जमा कर दो, एकदम नौकरी हो जाएगी।
1: सिर्फ फॉर्म भर देने से अगर नौकरी हो जाती तो मेरी नौकरी बहुत पहले हो गई होती। यार ऐसे फॉर्म बहुत भर चुका हूँ।
2: ओफो, मैं जानता हूँ नौकरी कैसे मिलती है दोस्त, तुम इसकी फिक्र न करो, सिर्फ फॉर्म भरकर जमा कर दो, बकिया मैं समझ लूंगा।
1: ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो जमा कर देता हूँ, देखता हूँ तुम मेरे लिए क्या करते हो।
2: ठीक है, देख लेना, मैं जा रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा तुम्हारे
1: पास। यार ठीक।
0: भैया ये तुम्हारे दोस्त हैं?
1: हाँ।
0: लगता है तुम्हें बहुत मानते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, अपने सगे भाई की तरह, जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी जमाने से।
0: भैया तब तो जफर भाई तुम्हारी नौकरी जरूर लगवा देंगे।
1: अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तेरा ब्याह करूंगा।
0: जाओ जाओ भैया, मैं तुमसे नहीं बोलती।
1: अरे तेरा मुंह बंद करने के लिए ही तो मैंने कह दिया था, ताकि तू चुप हो जा और मैं फेरी करने चला जाऊं, समझी?
2: मैं अंदर आ सकता हूं सर?
3: यस, कहिए क्या बात है?
2: सर मैं उसी बहाली के सिलसिले में आया हूं जो आप करने वाले हैं अपने डिपार्टमेंट में।
3: आई सी। देखिए मिस्टर, ये ऑफिस का चैम्बर है, मैं यहाँ इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता
2: जी,
3: इसलिए आपको जो भी बात करनी हो मेरे घर पर आकर करें। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड।
2: थैंक यू सर।

0: अच्छा आप आइए आइए, तशरीफ रखिए।
1: थैंक यू सर।
0: हाँ अब कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: सर वो आपके यहाँ जो वैकेंसी है उसके लिए मेरे एक कैंडिडेट ने आपके डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, उसका इंटरव्यू भी हो चुका है। अगर सर आप
0: उसकी नौकरी हो जाएगी अगर मैं उसका फेवर कर दूं।
1: जी
0: आप यही कहना चाहते थे ना।
1: यस सर।
0: लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसका फेवर क्यों करूं, मेरा क्या फायदा होगा।
1: जी वो मैं आपको सर
0: कहिए कहिए, रुक क्यों गए।
1: मैं आपको 10,000 रुपए मिठाई खाने के लिए दूंगा सर।
0: सिर्फ 10,000?
1: जी अगर 10,000 कम है तो फिर 15,000 ले लीजिए सर। मैं एक मामूली क्लर्क के लिए इससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ।
0: ऐ मिस्टर, आप मुझे रिश्वतखोर समझते हैं, मुझे रुपयों की लालच दे रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि मेरी निगाहों में रुपयों की कोई अहमियत नहीं।
1: ओह आई एम सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर।
0: मिस्टर आप तो एकदम नर्वस हो गए।
1: बात दरअसल ये है सर,

0: आजकल रिश्वत का जमाना है और बगैर रिश्वत दिए कोई काम भी नहीं होता, है ना?
1: यस सर।
0: आपका सोचना बिल्कुल दुरुस्त है। रिश्वत मैं भी लेता हूँ, लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या सर?
0: रुपयों के शक्ल में नहीं।
1: जी, तब किस शक्ल में सर?
0: औरत की शक्ल में।
1: क्या? मैं समझा नहीं सर।
0: बहुत भोले हैं आप, बहुत भोले। आपकी तो शादी हो गई होगी?
1: जी हाँ।
0: तो आप जरूर जानते होंगे कि औरत क्या शय है।
1: आप क्या कहना चाहते हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
0: अगर आप अपने कैंडिडेट की बहाली चाहते हैं तो एक खूबसूरत घरेलू लड़की का इंतजाम कीजिए। हाँ, उस लड़की के मार्फत कैंडिडेट का नाम एक पर्ची पर लिखकर भेजना ना भूलिएगा। ये इंतजाम हो गया तो फिर अपने कैंडिडेट की बहाली समझिए, वरना मुश्किल है।

0: अरुण।
1: कौन? जफर?
0: हाँ।
1: अरे अंदर आ जाओ, आवाज देने की क्या जरूरत है?
0: अभी मैं उसी ऑफिसर से मिलकर आ रहा हूँ यार।
1: कौन ऑफिसर?
0: अरे वही जिसके हाथों में तुम्हारी बहाली है।
1: अच्छा अच्छा, क्या कहा उसने? मेरी बहाली हो जाएगी?
0: हो जाएगी हाँ, अगर
1: अगर क्या? बोलो बोलो, रुक क्यों गए?
0: क्या बोलूं अरुण, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
1: आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं।
0: क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है।
1: जफर, ये सब डायलॉग क्यों बोल रहे हो? साफ साफ लफ्जों में क्यों नहीं कह देते कि रिश्वत की रकम ज्यादा है और तुम एक गैर की खातिर इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते?
0: ये तुम क्या कह रहे हो अरुण?
1: मैं ठीक कह रहा हूँ जफर, पैसे से किसे प्यार नहीं। पैसे के इस प्यार ने ही इंसान को इंसान से और खून को खून से जुदा कर दिया है। और मैं ना तुम्हारा खून हुआ नहीं।
0: अरुण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मुझे तुमसे ज्यादा पैसे से प्यार होता तो मैं तुमसे फ्रॉड नहीं भरवाता, बल्कि यूं समझ लो कि उस दिन गली के उस नुक्कर पर 10 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई थी नहीं होती। मैं तुम पर एक उचट्टी सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाता। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे पैसे से नहीं, तुमसे प्यार है, अपनी दोस्ती से प्यार है।
1: अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे साफ साफ बताओ, ऑफिसर से क्या बातें हुई?
0: कुछ न पूछो यार, रकम तो कुछ भी दी जा सकती है मगर।
1: यार तुम्हारी बातें पहले से कम नहीं, आखिर उसे रकम नहीं चाहिए तो फिर क्या? कुछ तो कहो, आखिर उससे क्या बातें हुई?
0: दफ्तर से छूटने के बाद मैं अफसर के घर गया था और उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मैं सख्ती मां गया।
1: फिर पहेली शुरू कर दी तुमने?
0: मैं तुम्हें पहेली नहीं बुझा रहा हूँ दोस्त, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि उस कमीने के लिए घरेलू लड़की का इंतजाम कहाँ से करूँ। कौन लड़की तुम्हारी खातिर अपनी आबरू नीलाम करेगी? कौन?
1: उसे रिश्वत में लड़की चाहिए?
0: हाँ, और वो भी घरेलू।
1: मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जफर, नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद एक मासूम लड़की की आबरू पर टिकी हुई हो। मैं जिंदगी भर एड़िया रगड़ता रहूंगा लेकिन किसी मासूम लड़की की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। यार तुम मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दो। हाँ, मैं जिस हाल में हूं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक है।
0: अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न आए तो खुद ही उस अफसर से मिल लेना, यह है उसका विजिटिंग कार्ड। अच्छा अरुण, मैं चलता हूँ।
1: मुझे शर्मिंदा ना करो दोस्त, मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर पूरा नाज है।
2: भैया चाय। तू आ गया बेटे? ये ले कागज, पद्मा ने दिया है, कह रही थी बहुत जरूरी कागज है, भैया के हाथ में ही देना।
1: अरे ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है, मेरी नौकरी हो गई माँ।
2: अच्छा?
1: मेरी नौकरी हो गई माँ।
2: तेरी नौकरी हो गई?
1: हाँ माँ, मेरी नौकरी हो गई।

0: हे भगवान, तेरा लाख लाख कृपा है कि तूने मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दी।
1: माँ, अब तेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी और परमा की शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, हाँ, अब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन ये लेटर पद्मा को कहाँ से मिला? माँ, पोस्टमैन आया था या जफर ने ला कर दिया?
0: पता नहीं बेटा, पद्मा से ही पूछ ले।
1: पद्मा कहाँ है माँ?
0: कमरे में होगी।
1: पद्मा, ए पद्मा, अरे सुनते क्यों नहीं? माँ, पद्मा कमरे में कहाँ है?
0: तो फिर कहाँ गई? मेरे आने से पहले तो यही थी।
1: उफ, अजीब लड़की है ये भी।
0: अरे, ये चारपाई पर कागज का कैसा टुकड़ा पड़ा हुआ है, देख तो।
1: कौन सा टुकड़ा?
0: ये देख।
1: अरे, ये तो पद्मा की लिखाई है।
2: भैया, अब मैं तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं रही, इसलिए घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरी मंजिल कहाँ है मैं खुद नहीं जानती, बस तुम लोगों के किसी काम आ गई। इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करना।
1: ये तूने क्या क्या पद्मा, ये तूने क्या क्या, मैं तो
0: अरे अरे क्या हुआ अरुण? अरे कुछ तो बोल। अरे कुछ बोल
1: बेटे।
0: अरे बोल ना रुक, हुआ क्या?
1: जैसे बहन की आंखें बटकी हुई हैं।
0: अरे कहाँ गई पद्मा? अरे मेरी पद्मा कहाँ गई यारों? अरे बोल बाजू मेरे।
1: कुछ बोल। पद्मा।
0: कुछ बोल।
1: पद्मा।
0: मेरी पद्मा कहाँ गई?

सामीन, आप सब जानते हैं कि गर्मी अपनी तपिश पर है और बहुत तेज़ी के साथ हम सबको मुतासिर कर रही है। जी हाँ, इस बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा अगर हम मुतासिर होते हैं तो हमारे घर के बुज़ुर्ग और बच्चे मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ हमारी घर की ख्वातीन भी मुतासिर होती हैं, क्योंकि वो कभी कभी जब घर से बाहर निकलती हैं और उन्हें इल्म नहीं होता कि बाहर मौसम कैसा है, तो परेशानी बढ़ जाती है। हमें इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब हम घर से बाहर निकलें तो छाता अपने साथ रखें, और बाहर रहें तो कोशिश कीजिए कि अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि ये पानी जो है ये बहुत अहम है। और पानी ना होने की वजह से डिहाइड्रेशन और उसके बाद कई तरह की परेशानियां जिस्म में हावी हो जाती हैं। इन सब से अगर बचना है तो कोशिश करिए कि कई तरह की चीज़ें हमारे पास कुदरती तौर पर मौजूद हैं, चाहे वो नारियल का पानी हो, नींबू पानी हो, या फिर कई तरह के जूस हो, उसे हम ज़रूर लें। इस बात का ख्याल रखिए कि हम घर में हों या बाहर, हमारे जिस्म में पानी की कमी हरगिज़ ना होने पाए, क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे जिस्म में लड़ने की कुव्वत पैदा करता है इस धूप और तपिश से, तो वो है पानी। इसके साथ ही सामीन हजरात, अब अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि कल फिर सजेगी अंजुमन। सुनते रहिए आकाशवाणी पटना से अंजुमन को, और अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और सी रामचंद्र को आप सुन रहे थे फिल्म आजाद में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को संगीत दिया था सी रामचंद्र ने।

राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया था फिल्म इंतकाम से। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गोपी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे कुछ चुनिंदा फिल्मी नगमे।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

शमशाद बेगम और सी रामचंद्र को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पतंगा में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

नेहा कक्कर और मीत ब्रो को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जुड़वा 2 में। सोनू के लिखे इस गाने को संगीत दिया था मीत ब्रो ने।

ऑल इज वेल, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे विशाल ददलानी और अरमान मलिक के आवाजों में। शब्बीर अहमद के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अमाल मलिक ने।

अरिजीत सिंह और शालमली खोलगड़े को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैं तेरा हीरो में। कुमार के लिखे इस गाने को संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

0: पंडित जसराज के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम

पहली सभा के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं पंडित भजन सोपोड़ी का संतूर पर बजाया राग यमन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित भोजन सोपोड़ी का संतूर पर बजाया राग यमन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी

कंपनी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं। सलीम बिजनौरी का लिखा ये गीत है, डब्बू मल्लिक का संगीत। फिल्म का नाम है मैंने दिल तुझको दिया।

0: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
1: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आपको कुछ और नए फिल्मी गाने सुनवाएंगे संध्या 5:40 पर दूसरी सभा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप इंतजार करें, हम लौटेंगे कुछ ही देर में कुछ नए और पुराने फिल्मी गानों को लेकर के। आपके पत्रों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ समय होगा 1:15। फिलहाल अभी समय हो चला है महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार का। आइए सुनते हैं नारी संसार।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं बहनों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी संसार में। नमस्कार बहनों, आज की इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी प्रेरणा। हर रोज की तरह आज फिर से होगी कार्यक्रमों में ढेरों सारी बातें, साथ ही आपसे आपको प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे और हर दिन की तरह आपको वार्ता भी सुनवाएंगे। बहनों, ये सारी चीज़ सुनवाते हुए हम आपको नए नए विषयों पर चर्चा भी बताएंगे। बहनों, सबसे पहले हम आज बात करते हैं महिला उद्यमिता। आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, क्योंकि यह महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। जब महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शुरू करती है तो वे केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि समाज में उनकी भूमिका भी बदलती है। उद्यमिता महिलाओं को गृहिणी की पारंपरिक छवि से बाहर निकालकर नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने जैसे कौशल और विकसित करने का अवसर देती है। यहाँ तक कि जब महिलाएं धन कमाती है और उसका प्रबंधन करती

है तो वे घर के महत्वपूर्ण फैसलों जैसे बच्चों की शिक्षा, निवेश, स्वास्थ्य आदि में समान भागीदारी बन जाती है। इसके साथ ही व्यवसाय से प्राप्त आय महिलाओं को अपनी और अपने परिवार की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देती, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महिलाएं व्यवसाय शुरू करके खुद को आत्मनिर्भर बना सकती है और बना भी रही है। बहनों, वो तो खुद ही आत्मनिर्भर होती ही है, साथ ही अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती हैं और अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उनके लिए भी सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, साथ ही लैंगिक असमानताओं को कम करती हैं। महिलाएं खुद तो रोजगार शुरू करती ही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को नौकरी देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो उद्यमिता के जरिए महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने फैसले, जरूरतों और जिम्मेदारियों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। महिलाएं अपना व्यवसाय करके केवल आर्थिक रूप से ही स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनती है, ताकि आने वाले हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रहें और जीवन की चुनौतियों का सामना खुद कर सकें। अगर आप भी अपने हुनर या स्किल के साथ अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रही हैं, तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने मुख्य हुनर जैसे सिलाई, कुकिंग या क्राफ्ट, डांसिंग, म्यूजिक, ऐसे बहुत सारे आपके अंदर हुनर छिपे हैं, उन्हें पहचाने और बिजनेस प्लान कर सकते हैं। घर बैठे आप ट्यूशन, कुकिंग क्लास, ब्यूटी पार्लर, कंटेंट राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसे काम भी शुरू कर सकते हैं। बहनों, लगातार सीखने की इच्छा और सही योजना से किसी भी छोटे काम को बड़ा व्यवसाय बनाया जा सकता है। शुरुआत जब भी करें, कम लागत और छोटे स्तर से करें। अपने आसपास को देखें कि किस चीज़ की मांग है और कौन से व्यवसाय आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में महिलाएं पारंपरिक व्यवसाय से हटकर तकनीकी स्टार्टअप और ई कॉम की ओर रुख कर रही हैं, जिसे सरकारी नीतियां और डिजिटल क्रांति में भारी बढ़ावा मिला है। अब महिलाएं उद्यमिता का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल साक्षरता और नेटवर्किंग, इंटरनेट की पहुंच और सोशल मीडिया के उपयोग से महिलाओं को घर बैठे व्यवसाय बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर नेटवर्क बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो बहनों, अगर आपके अंदर हुनर है, और हर महिलाओं के अंदर हुनर तो होती ही है, घर को काम देखते हुए, बच्चों को संभालते हुए अगर वो ठान ले कि हमें अपना कैरियर बनाना है और आर्थिक रूप से हम सशक्त बनना चाहते हैं, तो आप जरूर कर पाएंगे। बहनों, अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है या राइटिंग लिखने का शौक है, तो आप राइटर भी बन सकते हैं। बहनों, आज यूट्यूब कुकिंग चैनल के जरिए ऑनलाइन कुकिंग प्लान कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और उसे सीखने का कोशिश करें। धीरे धीरे अपना रुझान कैरियर की ओर बढ़ा सकते हैं। घर के कामों को समय के साथ करें और उस खाली समय में खुद के लिए समय निकालें। तो बहनों, कार्यक्रम में हम आगे भी बातें करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं पहले ये गीत।

मिलते मिलते हंसी वादियों में, फिल्म जुनून से आप सुन रहे थे और आशा करती हूँ कि आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा। लेकिन बहनों, इस गीत में आपको खोने की ज़रूरत नहीं है, आइए हमसे बने भी रहना है और आगे चर्चा भी करना है नए नए विषयों पर और नए नए जानकारी को लेकर। तो आप हमारे साथ फिर से आ जाइए और हमारे शब्दों को सुने और उन पर विचार विमर्श करें। तो बहनों, घर और कैरियर को एक साथ संभालना महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन समय प्रबंधन बनाकर और परिवार का सहयोग कर और सहयोग लेकर महिलाएं घर और कैरियर के बीच संतुलन बना सकती हैं। आज के दौर में महिलाएं बाहर जाकर काम भी कर रही हैं और साथ ही घर भी संभाल रही हैं। दोहरी भूमिकाओं के बीच महिलाओं को न सिर्फ अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ भी पूरा तालमेल बनाकर चलना होता है। बहनों, आप इन दोनों कामों के बीच सही तालमेल बिठाकर और उनके लिए आप एक सही सूझबूझ के साथ सूची तैयार कर आप काम को और घर के कामों को और बाहर के कामों को आसानी से कर सकते हैं। जो काम आपको ज़्यादा ज़रूरी है और जिसकी समय सीमा नज़दीक है, उसे सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आपका काम समय पर पूरा होगा, साथ ही आपका समय कम लगेगा और आपको समय भी बचेगा। जब भी बहनों कम समय में काम हो जाती है तो हमारी हड़बड़ी खत्म हो जाती है और तनाव जैसी समस्या से भी हमें छुटकारा मिलता है। इसीलिए जब भी काम करें तो सूची तैयार कर लें। जब भी जो भी काम करना है, एक दिन पहले उसकी रूटीन बनाएं और कुछ कामों को आप पहले भी कर सकते हैं। अगर सब्जी बनाना है, कौन सा सब्जी बनाना है, उसे हम पहले से काट कर धोकर और छिलकर भी रख सकते हैं। अभी तो आप फ्रिज का ज़माना है, लोग फ्रिज में भी रख देते हैं कि ताकि समय पर काम हो सके। इससे आपका काम भी समय भी बचता है और काम आसानी से होता है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और निजी जीवन में संतुलित रहने से मानसिक सुकून तो मिलता ही है, आप खुद के लिए वक्त भी निकाल पाते हैं। तो बहनों, अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूरी नहीं है कि हम खुद ही करें। घर के काम और जिम्मेदारियों को अपने पार्टनर और परिवार के अन्य सदस्य से भी ज़रूर बांटें। इससे एक तो आपका काम जो है, आपका बोझ नहीं रहेगा आपके ऊपर, साथ ही आपका काम बट भी जाएगा। साथ ही एक दूसरे की फिक्र जो करते हैं, उसका जज्बा देखकर आप लोग का जो भी आपस में प्यार है और वो बंधन और मजबूत हो जाता है, लगाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे का ख्याल रखने से, एक दूसरे का हाथ बटाने से आपस की जो भेदभाव होती भी है, थोड़ी बहुत वो भी मिट जाता है और बहुत मजबूत रिश्ता बन जाता है। तो काम को बांटकर ही करना चाहिए। हर किसी को अपने परिवार में बहू हो, पत्नी हो, बेटी हो या छोटी बच्ची हो, सभी सदस्यों को एक दूसरे की परेशानी को समझते हुए उनका हाथ बटाना चाहिए। साथ ही बहनों, घर में हो चाहे ऑफिस जा रहे हो, उस बीच में भी संतुलन बनाकर अगर हम रखते हैं तो ऑफिस में भी हमारे बहुत से कलीग होते हैं, वो भी हमारा मदद अवश्य करते हैं। तो ऑफिस के काम को हम ऑफिस में रखेंगे, घर के काम को घर में रखेंगे। परिवार का समर्थन और सहयोग बहुत ज़रूरी है। कैरियर कोई भी हो, कामकाजी स्त्रियों के लिए एक ही समय में दोनों चीज़ों के बीच संतुलन बनाकर चलना आसान तो नहीं होता, लेकिन कैरियर को ऊंचाई तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प और पारिवारिक सहयोग इस राह पर आपको चलने के लिए आसान बना देता है कि आप अपने कैरियर को भी अच्छा से कर सकते हैं, घर के कामकाज को भी संभाल

सकते हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रख पा सकते हैं, साथ ही आप मानसिक और तनाव से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए जब भी काम करें उसकी सूची तैयार जरूर करें। और हर परिवार में हर कोई को एक दूसरे का सहयोग जरूर करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है बहनों। जब परिवार का हर सदस्य महिलाओं के सपने और जिम्मेदारियों में हाथ बटाता है, यह सहयोग ही उनके विकास का आधार बनता है। महिलाओं का सहयोग काम का हो या ऑफिस को हो, प्रोजेक्ट में हो, उनका सम्मान और सहयोग अवश्य करना चाहिए। बहनों काम को व्यवस्थित ढंग से करके सही जगह पर रखें ताकि वह आसानी से मिल सके। जब अव्यवस्थित ढंग से कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं तो वे समय पर नहीं मिलते, जिससे समय की बर्बादी होती है। अपनी चीज़ों को एक जगह पर रखें, एक जगह पर रखने की आदत बनाएं ताकि उन्हें ढूंढने में आपका वक्त जाया न हो। बहनों अपने बच्चों को भी उनके उम्र के हिसाब से छोटे छोटे काम सौंपें, जैसे खिलौने जगह पर रखना, अलमीरा सेट करना या अपना टिफ़िन बैग में डालना, या पढ़ने के बाद सारे बुक स्टडी टेबल को अपनी जगह पर रखना। इस तरह से अगर हम बच्चे को पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं तो बच्चे तो इससे समझदार बनते ही हैं और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। तो बच्चे का भी सहयोग आप अपने घर में ले सकते हैं, क्योंकि वो अभी से काम को सही ढंग से करना सीखेंगे तो आगे चल कर भी उन्हें भी कामयाबी मिलती रहेगी। तो बहनों अपने ध्यान देकर अपने बच्चों का, परिवार का और कैरियर का सब चीज़ को देखते हुए आप अपने कैरियर भी बना सकते हैं। साथ ही बहनों अपनी स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से हमें ख्याल रखना है। कैरियर तो बनाना ही है, घर परिवार को संभालना ही है, लेकिन अपना स्वास्थ्य भी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। अभी गर्मी का समय ज़्यादा बढ़ गया है, घर भी संभालना है, बाहर के कामकाज को भी देखना है, तो खान पान का ध्यान अवश्य रखें। घर से बाहर निकलते वक्त आप पानी की बोतल साथ में रखें, छतरी का प्रयोग करें, टोपी कैप स्कार्फ से अपने सिर को चेहरे को ढककर चले, सनस्क्रीन लोशन लगाना ना भूलें, ये आपको धूप से बचाएंगे। साथ ही खुद को हाइड्रेट हमेशा रखें। अभी के समय में पानी हमेशा पीते रहें और पानी की बोतल विशेष तौर पर एकदम याद से रखें, उसे भूलें ना। और मौसमी फलों का, सब्जियों का सेवन जरूर करें। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ जो भी मिल सके लिक्विड मात्रा में वो पीते रहें, ये आपको हाइड्रेट बनाए रखेंगे और आपको लू से बचाएगा। तो बहनों कार्यक्रम में हम आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए क्यों न सुनते हैं फिर से एक और गीत।

मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, फिल्म वारिस से सुन रहे थे। कलाकार थे मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर। बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का, और हर दिन कुछ खास में हम लेकर आए हैं आप अपनी सेहत का रखे ख्याल। बहनों, इन दिनों गर्मी बढ़ती ही जा रही है, अभी बारिश तो कभी उमस भरी गर्मी। इस समय सभी को अपने सेहत और खान पान का और पहनावे पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मौसम में सबसे पहले खुद को हाइड्रेट रखें, भरपूर पानी पीते रहें और मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करें। तरबूज, खीरा, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी जरूर पिए। मसालेदार और तला भुना और हैवी खाना खाने से बचें। सादा और हल्का खाना ही खाएं। घर से निकलते वक्त पानी की बोतल, छतरी और टोपी स्टॉल जरूर लेकर चलें। बहनों, अपने घर में अपने परिवार का सा खासकर अपने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो बहनों, अपना ख्याल आप जरूर रखेंगे, और इसी वादों के साथ आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप पत्रों के माध्यम से हमें अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। हमारा ईमेल आईडी है akashwani.darbhanga@gmail.com। बहनों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम से दीजिए प्रेरणा को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया

पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है।

ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिण पंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। देशभक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे अब से थोड़ी ही देर में 1:10 से। आज आप सुनेंगे A.R. रहमान और सुखविंदर सिंह को। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 1:15 से। 2:00 प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

फिर से हम आपके लिए लेकर आएंगे 2:30 से। 3 बजे प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मराठा संगीत। कलाकार होंगी आशा भोसले।

अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। तरुण मिथिला के साथ कार्यक्रम शुरू होगा संध्या 5 बजे। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता जरूरी, इस विषय पर चर्चा। फिल्म संगीत 5:40 से 6 बजे हिंदी समाचार। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज और कल के मुख्य कार्यक्रमों के विषय में आप जानकारी प्राप्त करेंगे 6:05 से। 6:10 पर विद्यापति गीत प्रसारित किया जाएगा। मैथिली संवाद का प्रसारण होगा 6:25 पर हमारे पटना केंद्र से। गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे झरोखा। चर्चा होगा गांव के विकास में ग्रामीणों का योगदान। और खेती गृहस्थी के अंतर्गत आज आप चर्चा सुनेंगे गर्मी में पशुओं की सुरक्षा कैसे करें। एक प्रायोजित कार्यक्रम भी आप खेती गृहस्थी के अंतर्गत सुनेंगे। कार्यक्रम का नाम होगा उड़ान। समय होगा 7:05। प्रादेशिक समाचार 7:30 से और जिले की हलचल 7:47 पर।

रोजगार सूचना का प्रसारण समय होगा 2:10 पर 2:15 से। आप सुनेंगे दोपहर समाचार। फिल्म संगीत एक बार

7:52 एक बार फिर से समय होगा फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप। विज्ञान कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:15 से। समाचार संध्या का प्रसारण होगा 8:45 पर न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। उर्दू खबरें 9:15 से, साहित्य भारती 9:30 से और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेंगे आप रात्रि 10:00 से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हम आपको सुनवाते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र का प्यार भरा नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद के गाने आपके नाम के साथ। शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला और आपको सुनवाते हैं वो गीत जिसे आवाजी दी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम ने। SH बिहारी की ये रचना थी, OP नैयर की संगीत रचना। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राम

पट्टी गौस नगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो अमर कुमार। ताजपुर मुड़वा से सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से आप सभी हैं भाई कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंज राजार्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोलकी सकड़ा से जयंत कुमार बैरागी, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, आरु साहू। आप सबों ने सुनना चाहा है ये गीत, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म स्थान से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने। सुनना चाहा है आप सबों ने बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से बली उल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से डब्बू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। ये पत्र है आप सबों का। जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल जगभिये, राधिका जगभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय जगभिये। सुनिए आप सबों की पसंद का ये गीत फिल्म शान से।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आपके पत्रों पर आधारित ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हर शनिवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज का भी ये दौर चल रहा है, हम आपको सुनवाएंगे गाने 2 बजे तक। फिलहाल ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आक्रोश से। सुनने के लिए पसंद आप सबों ने भेजा है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, झंझारपुर पुरानी बाजार वार्ड 9 से गौरव, विवेक, गौतम, आरब, शाश्वत, भव्या, गोल्डी, अंशु और परिवार के सभी सदस्यों ने सुनना चाहा है इस गीत को। साथ ही साथ ये पत्र हमारे पास है राज नांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी, बिहारी कॉलोनी महासुंदर से बलीउल्लाह फकीर, डब्बूउल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। आइए हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है आक्रोश, गायक कलाकार हैं जावेद अली, गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: जी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों, आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत, आपके पत्रों के द्वारा प्राप्त फरमाइशों के आधार पर। यह कार्यक्रम जारी रहेगा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना के बाद। श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन, उपयोग तथा जैविक विविधता की रक्षा करके हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353, यानी 9430029353।

0: और हमारा लैंडलाइन नंबर होगा 0672-222-481, यानी 0627-222-481। समय याद रखें, रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। अब हम वापस चलते हैं अपने फिल्मी गीतों के सफर पर और अब सुनवाते हैं आपको वो गाना। उस वो गाना जिसे आवाजें दी लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह ने फिल्म मौसम के लिए। गुलजार ने इस गीत को लिखा और मदन मोहन ने संगीत दिया। पसंद आप सबों ने किया। नगर निगम वार्ड 28 से नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हमारे श्रोता हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहुरुबीना वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अभिहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैख और चीना सैख। कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल सैख, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। फुटानी चौक नरहन स्टेट से भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लन मिश्रा। कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजन राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। सुनिए आप सबों की पसंद का ये गीत फिल्म मौसम से।
1: अरे हमार बाबा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जी हाँ दोस्तों, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद पर। ये सभी गीत आपने हमें पत्रों में लिख भेजा है अपने नाम के साथ, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट के साथ। आप हमारे सभी कार्यक्रमों को अपने रेडियो सेट के अलावा अपने मोबाइल हैंडसेट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन को, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, हमारे सभी केंद्रों के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अगली पसंद है बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनिता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार अमरेंद्र और वंश प्रसाद की। एक और पत्र है गडिया मौजे अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, और ये हैं पंजाब गांधी चौक रोपर से हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक, मिका वीरक। आप सबों के लिए ये गीत है फिल्म हंसते जख्म से, मोहम्मद रफ़ी और एस बलवीर की आवाज़ें हैं। कैफी आजमी का लिखा ये गीत है, मदन मोहन का संगीत निर्देशन।
1: Hey.

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था। कुछ ही पलों में अब हम जुड़े रहेंगे अपने पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जबकि 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर वर्ष 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेड़ी स्थित एक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के घटना में डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप राजू कुमार सिंह पर लगा था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना

0: रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राओं को पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दौरे के लिए रवाना किया गया। IIT पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने छात्रों को रवाना किया। इस अवसर पर IIT पटना के निदेशक TN सिंह ने कहा कि युवा संगम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत 18 जिलों में बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के जतकुदिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों दरभंगा जिले की रहने वाली थीं। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। एनडीए की हलीफ जमात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार कानून साज काउंसिल की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल बीजेपी ने 4 और जनता दल यू ने 4 उम्मीदवारों के नाम की फहरिस्त जारी की थी। गौरतलब है कि बिहार कानून साज काउंसिल की 9 सीटों के लिए 2 साल इंतखाबात जबकि 1 सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी रुकन असम्बली राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हलाकत और असलहा एक्ट के मामले में कसूरवार करार दिया है। अदालत ने उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी अहलिया रेनू सिंह समेत दीगर मुलजमीन को बरी कर दिया है। ये मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी वाक़े एक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान जॉय फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का इल्ज़ाम राजू कुमार सिंह पर लगा था। ज़राअत और किसान फलाह वजारत ने कहा है कि मुल्क भर में अब तक 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ मुहिम से जुड़ चुके हैं। वजारत के मुताबिक मुहिम के तहत अब तक 17,800 से ज़्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए गए हैं जिनसे

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं रोजगार सूचना। भारतीय नौसेना ने कुल 60 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन शुरू होने की तिथि थी 29 मई 2026 और आवेदन समाप्त होने की अंतिम तिथि है 18 जून 2026। इसके लिए वे उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच हुआ है आवेदन कर सकते हैं। SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 के लिए कुल पदों की संख्या है 12,256। आवेदन शुरू हो चुकी है 31 मई 2026 से, अंतिम तिथि है 22 जून 2026। इस पदों के लिए उम्र है 18 वर्ष से 32 वर्ष। 1 अगस्त 2026 को आयु की गणना की जाएगी। आप SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा

कुल पदों की संख्या है 11,127। 15 मई 2026 से आवेदन शुरू है। 14 जून 2026 अंतिम तिथि है आवेदन के लिए। न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। 1 जुलाई 2026 के आधार पर आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ के पदों के लिए और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ के साथ ही सीए कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर रिक्तियां निकाली है। पदों की संख्या 543 है। आवेदन शुरू होने की तिथि 1 जून 2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम 21 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से, साथ ही साथ अपने रेडियो सेट पर। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में

0: कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है।

0: श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका के सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ। आइए आनंद लेते हैं चंद फिल्मी नगमों का। कार्यक्रम शुरुआत हम करते हैं बादशाह फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाजें दी है उदित, क्षमा करेंगे, अभिजीत और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन, उपयोग तथा जैविक विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 9430029353 और लैंडलाइन है 0627222481। समय याद रखें, रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर का ये गीत, अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में। गीत को लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

ये संगीत अभी आप सुन रहे थे शिव हरि के संगीत निर्देशन में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, आवाजी दी थी अभिजीत और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम था डर। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मराठी संगीत। आज की कलाकार हैं आशा भोसले।

प्रादेशिक संकेत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे मराठी संकेत। कलाकार थी आशा भोसले। प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो रहे हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान

अशरफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल। मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं नाचो।
2: नहीं।
1: गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है। आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदाने जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब की चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला

0: भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंसी जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
1: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियायत तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कारने
0: का कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमीबोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
1: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
0: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात वे ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
1: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
0: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
1: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
0: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
1: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
0: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
1: जी आलम पना,
0: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
1: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
0: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कम सिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
1: जो हुक्म वाली जा।
2: तस्लीम।
0: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
2: मेरा नाम एमिली है योर मैजेस्टी।
0: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम?
2: जी योर मैजेस्टी।
0: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
2: आलम पनाह, आलम पनाह।
0: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
2: जी जी हाँ, जान पाना हा, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
0: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
2: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं, हम यहाँ आपकी पनाह में रहने चाहता है।
0: ठीक है अमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
2: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
2: ओह नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो।
2: ओ जय पाना, आप कितने अच्छे है, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ हमें भी तुम अच्छी लगती हो, तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
2: ओह ओह शुक्रिया आलम पना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत

0: बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हाँ आलमपना, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
2: जहांपनाह,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां अली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपनाह, बेशक, इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
2: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है, क्या हुआ?
2: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
2: हुजूर आला, पिछले 1 माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली हैं।

0: क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
1: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
0: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं, और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम दो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। चैपना का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 मतलब है 26 लाख रुपया

0: सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है,
1: हो
0: वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, खुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलमपना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्ट्री की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है। अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आले कद्र, वो
2: आलमपना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शान शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खां हुजूर के खौफ से

0: किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलमपना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें बराई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूं कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे, फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला के थे, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे

0: स्टेज का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर के एजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन हाँ। की तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए भी गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बॉनी एम, ओके,
1: बॉनी एम का, ओके,
0: बॉनी एम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है, हाँ। अजीब दास, मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सब को चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं, तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज़्यादा लेकर आऊँगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा ज़िद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझमें ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई। तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है।

0: जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है, तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, ले अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी? 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, आप सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैं साइंस, मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो

0: मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए. फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे. जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने.
1: ओह.
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूँ तो मैं शायद सफल हो जाऊँगा. मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीकेमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो. तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें. तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है. मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ तो उन्होंने सब ने ना कर दी. मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ. तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा. तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है. आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी.
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है.
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है.
0: करेक्ट.
1: वो हर चीज से डरता है.
0: हाँ.
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए.
0: हाँ.
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो.
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है. हाँ. लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं. उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख के मेरा बच्चा आगे जाए वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना. और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े. हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए. बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए.
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई.
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गई, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ. और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए. बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर. तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए. तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया. और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है.
1: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता.
0: नहीं होता. तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा. मैं सच में ना जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है. और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में. फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था.

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे

0: से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रहा करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊँ कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं

0: ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मुझे दिखते क्या है, तब तक मुझे कोई थी नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है। लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया। है ना,
0: तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है,

0: मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो कई हद तक मैं सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना।
0: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था
1: अच्छा।
0: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं,
1: वाह वाह।
0: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ
0: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो
1: हाँ
0: मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ। लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है। जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है। तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे। तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं की वगैरह। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया। किसी की गलती नहीं है।
1: फिर
0: मैंने
1: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं। तो वो डर जाते थे, मैं अगर चाहूँ भी तो उनके साथ काम करूँ, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था। वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
0: अंग्रेज
1: करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती है
1: वो वाला डांस
0: हाँ,
1: सेक्शन।
0: वो वाला हाँ। तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पे हम बात करेंगे लेकिन अभी पहले इसको
0: इसको तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं नहीं नहीं ये तुम पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: कहानी है
0: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: लेकिन स्कूल्स
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी

0: अलग होती है, उसके nuances अलग होते हैं,
1: एकदम अलग सर,
0: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं,
1: absolutely.
0: वो तो आप जानते नहीं थे,
1: absolutely.
0: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा.
1: जरूर. तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा. तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है. तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है. रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे. तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ. आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत. It was so sweet, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 years. He says, मैं नहीं करना. मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना है. सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है. ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी. अरे ठीक है. आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन. तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा. मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है. तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल. तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी. तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली. गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया. वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट में, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है. सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा. अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या

मीडियम वेव 231.5 मीटर पर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों को प्यार भरा नमस्कार। युवा बंधु, कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आज हम सुनेंगे तरुण मिथिला। युवा साथियों, आज का जो दौर है वो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि ये इंटरनेट का दौर इसे कहा जा सकता है, और इस इंटरनेट युग में जो साइबर सुरक्षा है इस पर जागरूकता बहुत ही अत्यावश्यक है। आज हम अपने युवा श्रोताओं के साथ युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता ज़रूरी इस विषय को लेकर के हम अपने युवा श्रोताओं से बातचीत करेंगे। युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता ज़रूरी है, वैसे तो सभी वर्गों के लिए यह आवश्यक है, लेकिन जो युवा हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसीलिए हम उनकी बात करते हैं। वे इंटरनेट और सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, जिससे वे फिशिंग स्कैम, साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी का आसान शिकार बन जाते हैं। हालांकि कुछ हमारे ऐसे जागरूक युवा हैं जो इससे कैसे सुरक्षित हों इस पर जागरूकता कार्यक्रम भी करवाते हैं और जागरूक भी लोगों को करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें मालूम नहीं कि ये जो साइबर सुरक्षा को किस तरह से हम अपनाएं। युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना आवश्यक है। श्रोताओं, इन आवश्यक बातों पर हम अपने युवा श्रोताओं से बातचीत करते रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत एक

युवा श्रोताओं, आज के इस समय, आज का जो दौड़ है, इस दौड़ में साइबर सुरक्षा को लेकर के जागरूकता अत्यंत ही आवश्यक है और युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण बातों की जो जानकारी है वो हम अपने अब युवा श्रोताओं से साझा कर रहे हैं कि सभी सोशल मीडिया और बैंकिंग अकाउंट्स के लिए मजबूत, साथ ही लंबे कम से कम 15 अक्षर वाले और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं। ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर, संख्या और विशेष प्रतीकों का मिश्रण हो। साथ ही एक जो सबसे अहम बात है कि इस पासवर्ड को आप कहीं लिख करके ना रखें या किसी ऐसे सुरक्षित जगहों पर रखें जहां पर आप पूरे तरह से सिक्योर हैं, आप इस बात से आश्वस्त हैं कि जो मेरे रखे हुए जो भी कागजात हैं उसे कोई भी नहीं देख सकता है। ऐसे जगहों पर अपने पासवर्ड को रखें। यदि बहुत लंबे पासवर्ड हैं और आपको याद नहीं है तो अपने आईडी पासवर्ड इस तरह से सुरक्षित रखें। साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि, फ़ोन नंबर, घर का पता, इसे अक्सर सार्वजनिक न करें। यदि अति आवश्यक जहां पर न हो, निश्चित रूप से आप वहां पर इस जानकारी को साझा न करें। हाँ, एक बात और है कि कहीं कि कोई फ़ोन करके कोई अनजान व्यक्ति आपसे इस तरह की यदि बातें पूछें, आपके घर का पता, फ़ोन नंबर, जन्मतिथि, तो निश्चित रूप से, या जो आपके आधार नंबर हैं, जो आपके पैन नंबर हैं, तो आप सजग हो जाएं, उसी समय आप सावधान हो जाएं। आप अपने मोबाइल में जो प्राइवेसी सेटिंग्स है उसका सही उपयोग करें ताकि अनजान लोग आपकी गतिविधियों पर नज़र न रख सकें। जो अनजान ऐप्स, जो लिंक आते हैं हमारे मोबाइल पर, हमारे मैसेज बॉक्स में, उसे यदि आपको ऐसा लगे कि यह कुछ इस तरह से अनजान है, कहां से आया, तो बिल्कुल उसे छुए ही नहीं या उसे डिलीट कर दें, तत्काल उसे डिलीट कर दें। साथ ही किसी भी अनजान लिंक, लॉटरी के मैसेज या लुभावने विज्ञापनों पर क्लिक ना करें। जैसा कि अभी हमने आप लोगों से इस बातों का साझा किया है, अपनी बैंक डिटेल्स या पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा ना करें। इसके साथ ही हमेशा अपने फ़ोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को अपडेट करते रहें ताकि वे नए सुरक्षा खतरों से बच सकें। तो श्रोताओं, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए सुनते हैं कुछ मैथिली गीत।

युवा श्रोताओं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अत्यावश्यक यानी ज़रूरी। अभी हमने बात की कि कैसे जो अनवांटेड कॉल्स हैं, जो अनवांटेड मैसेज हैं, उस पर हम क्लिक ना करें, उसको हम लोग इंटरटेन ना करें, साथ ही अनावश्यक रूप से यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे बातचीत कर रही है या कुछ इस तरह से जो कि कुछ इस तरह की बातें जो कि चौंकाने वाला हो, तो तभी आपके जहन में यह आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हमारे साथ हो रहा है और हम साइबर जाल में हम फंस रहे हैं, कोई हमें फंसा रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। यदि कोई आपको ऑनलाइन परेशान करे, ब्लैकमेल करे या आपत्तिजनक मैसेज भेजे, तो तुरंत अपने माता पिता या शिक्षकों को बताएं, साथ ही जो आपके बड़े बुज़ुर्ग, जो आपके आपसे बड़े भाई जो जानकार हैं, उनसे आप संपर्क करके उन्हें अपने मतलब अपने जो ऑनलाइन परेशानी जो आपको हुई है, जो साइबर परेशानी आपको हुई है, उसके बारे में आप उन्हें समझाएं। साइबर अपराध से जुड़ी किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर यानी 1930 पर संपर्क करें या भारत सरकार की साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आइए श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आपसे बातचीत आज हम कर रहे हैं कि डिजिटल जागरूकता क्यों जरूरी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करते हैं, साइबर खतरों को किस तरह से पहचाना जाए, जिम्मेदार ऑनलाइन

0: व्यवहार कैसे हम सीखें, इन सभी बातों पर हमारी आपसे बातचीत होती रहेगी। पुनः गीत संगीत की ओर चलते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: सुनो।

0: それは。
1: श्रोताओं, साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर यदि बात करें तो बताएं कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य

कर्मचारियों को या अन्य युवाओं को उन खतरों और कमजोरियों के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करना है जिनके बारे में उन्हें साइबर सुरक्षा घटनाओं को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए जागरूक होना आवश्यक है। साइबर हमलों और डेटा लीक में मानवीय त्रुटि की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण पाना आवश्यक है। खतरों को पहचानने, उन पर प्रतिक्रिया करने और उनकी रिपोर्ट करने का ज्ञान, ये सबसे बड़ी बात आती है। साथ ही बता दें कि साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरे और जोखिम बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ताओं की इनके प्रति जागरूकता भी अब बढ़ रही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि जैसे ही उन्हें फ़ोन आता है, कुछ ऐसे अनवांटेड कॉल आते हैं, तो वे सजग हो जाते हैं। तो हमें किसी भी इस तरह की, यदि बिना किसी जान पहचान के यदि कॉल आए, कोई भी इस तरह से यदि कोई मैसेज हम यदि हमारे पास आते हैं कुछ इस तरह के, जो हमें, जिसमें कि हमें कुछ अजीब सा लगे, हम चौंक जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें खतरा भांप लेना चाहिए और तत्काल उसे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। तो आइए पुनः हम गीत संगीत की ओर चलते हैं।

जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अभी हम ये गीत सुन रहे थे श्रोताओं, सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म संगीत के अंतर्गत आज हमने जितने भी गाने सुने हैं वो बेवफा सनम का, साथी फिल्म का और सलाखें फिल्म से। अभी हम इस कार्यक्रम में हमने फिल्म गीत सुने हैं। जिन जिन कलाकारों के द्वारा गीत गाए गए उसमें उदित नारायण, चित्रा, कुमार सानू और सोनू निगम, इन कलाकारों के द्वारा आज इस युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत ये गीत हमने सुना। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। युवा श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम तरुण मिथिला यानी युवाणी से अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तरुण मिथिला। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था।

0: के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
1: बाल समय रवि भक्षि लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई

0: बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी। लीजिए जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हमारे केंद्र से शेष बचे हुए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

200 पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी। लीजिए जानकारी प्राप्त करते हैं, आज हमारे केंद्र से शेष बचे हुए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद 6:10 पर हम सुनेंगे विद्यापति गीत, और इसके बाद 6:25 पर हम सुनेंगे मैथिली में संवाद।

श्रोताओं, संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा संबोधित कार्यक्रम गांव घर। इसके अंतर्गत आज आप झरोखा सुनेंगे। इसी के अंतर्गत संध्या 7:00 किसान भाई सुनेंगे खेती गृहस्थी। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करते हैं। श्रोताओं, कुछ फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 7:52 पर। आज आप सुनेंगे 8:15 पर विज्ञान कार्यक्रम।

श्रोताओं, 8:45 पर रात्रि में आप सुनेंगे समाचार संध्या। इसके बाद अंग्रेजी में News@9 एंड और 9:15 पर रात्रि आप सुनेंगे उर्दू खबरें। साहित्य भारती ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, इसे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। वहीं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे, इसे भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आइए अब सुनते हैं कुछ विद्यापति गीत। कलाकार हैं काशीनाथ झा किरण।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं विद्यापति गीत।

0: अभी आप विनय कुमार झा की आवाज में ये विद्यापति गीत सुन रहे थे। इसी के साथ ही विद्यापति गीत का पर आधारित ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। लीजिए अब सुनते हैं मैथिली संवाद।
1: नमस्कार।

आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। एनडीएक घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार विधान परिषदक एक सीट लेल उम्मीदवारक नामक घोषणा कयलक अछि। पार्टी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी उम्मीदवार बनाओल गेल छथि। काल्हि भाजपा 4 आ जदयू 4 उम्मीदवारक नामक सूची जारी कयने छल। उल्लेखनीय अछि जे बिहार विधान परिषदक 9 सीटक लेल द्विवार्षिक चुनाव जखनकि 1 सीट लेल उपचुनाव भऽ रहल अछि। दिल्लीक राउज एवेन्यू अदालत मुजफ्फरपुरक साहिबगंज सँ भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह के गैर इरादतन हत्या आ आर्म्स एक्टक मामला मे दोषी करार दैत हुनका हिरासत मे लेबाक आदेश देलक अछि। कोर्ट एहि मामला मे हुनक पत्नी रेणु सिंह समेत आन आरोपी के बरी कऽ देलक। ई मामला 31 दिसंबर 2018 के दिल्लीक फतेहपुर बेरी स्थित एकटा फार्म हाउस मे न्यू ईयर पार्टी मे फायरिंग सँ संबंधित अछि। पार्टी में हर्ष फायरिंग भेला सँ डॉक्टर अर्चना गुप्ताक माथ में गोली लागल छल। इलाजक क्रम में हुनक मृत्यु भऽ गेल छलनि। फायरिंग करबाक आरोप राजू कुमार सिंह पर लागल छल। बिहारक वैभव सूर्यवंशी के भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में सम्मिलित कयल गेल छनि। एहि सँ वैभव मिथिलाक संग संग सम्पूर्ण बिहारक नाम रोशन कयलनि अछि। वैभव भारतीय टीम में चुनल गेल सबसँ कम उम्रक क्रिकेटर बनि गेल छथि। ओ 15 बरख 71 दिनक उम्र मे भारतीय टीम मे जगह बनौलनि। वैभव जून जुलाई मे आयरलैंड आ इंग्लैंडक विरुद्ध होबय वला T20 सीरीजक संग संग एशियन गेम्सक वास्ते सेहो चुनल गेल छथि। विदित अछि जे वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिलाक ताजपुरक रहनिहार छथि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम मे सम्मिलित भेला पर बधाई दैत हुनक उज्ज्वल भविष्यक कामना कयलनि अछि। दोसर दिस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप U18 विजेता रियान मोहम्मद के 22,50,000 टाकाक प्रोत्साहन राशि प्रदान कयलनि। श्री चौधरी रियान मोहम्मदक उज्ज्वल भविष्यक शुभकामना सेहो देलनि। एहि मध्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि अछि जे राज्य मे खिलाड़ी लोकनि लेल मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के प्रोत्साहित कयल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री आइ पटना स्थित लोक सेवक आवास मे खेल विभागक एक उच्च स्तरीय बैसार मे ई बात कहलनि। मुख्यमंत्री राजगीर मे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के इएह वर्षक अंत धरि पूरा करबाक निर्देश दैत आनो योजना के शीघ्र पूरा करबाक निर्देश देलनि। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानक अंतर्गत युवा संगमक 6ठम चरण में राज्यक विभिन्न जिला सँ चुनल गेल 50 छात्र छात्रा के पंजाबक शैक्षणिक आ सांस्कृतिक भ्रमण लेल विदा कयल गेल। IIT पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार छात्र सब के विदा कयलनि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन आ पुनर्मूल्यांकन लेल आवेदन जमा करबाक अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कऽ देलक अछि। एहि सँ पूर्व आवेदन जमा करबाक अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित छल। प्रदेशक कतेको क्षेत्र में बीतल बेस राति आंशिक सँ मध्यम स्तरक वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार दरभंगा मधुबनी पटना समस्तीपुर सुपौल अररिया भागलपुर आ कटिहार समेत 18 जिला में वर्षा भेल। वर्षा हेबा सँ लोक सभ के भीषण गर्मी सँ राहत भेटल अछि। मुंगेर सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे जिलाक लड़ैया टाँड थाना क्षेत्रक जतकुटिया गाम मे ठनकाक चपेट में अयला सँ एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेलनि। एहि मध्य मौसम विभाग आइ प्रदेशक दक्षिणी आ उत्तर पूर्वी क्षेत्रक किछु स्थान पर भारी वर्षा हेबाक चेतावनी देलक अछि। एहि क्रम में ठनका खसबाक अलर्ट सेहो जारी कयल गेल अछि। बेगूसराय जिलाक सिमरिया गंगा घाट पर स्नान करबाक क्रम में डूबला सँ एकहि परिवारक 2 महिलाक मृत्यु भऽ गेलनि। दुनू दरभंगा जिलाक रहनिहार छलीह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देशभरि में लगाओल गेल मेगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप में मधुबनी जिला में 200 सँ बेसी लाभुकक मध्य 10 करोड़ सँ बेसी ऋणक राशिक स्वीकृति आ संवितरण कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गांव घर।

0: गाम घरक अंतर्गत झरोखा सुनिहार सब श्रोतागण के मिहिर कुमार झा के नमस्कार, संगे देवू भाई अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार मिहिर भाई, संगे समस्त श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। आ आई तो बुझते छी मिहिर भाई जे आई शनि दिन है, आ शनि दिन को हमारा लोकन सप्ताहिक कार्यक्रम लक आवे छी झरोखा। तो कार्यक्रम झरोखा तो सुनबे करब, संग संग गीत नादक आनंद सेहो लेब, मुदा सबसे की विचार पहने किछ गप सब तो न कलबाक चाही, किएक तो हमारा लोकन ग्रामीण परिवेश में रहे छी मिहिर भाई। आ ग्रामीण परिवेश में रहे छी तो हमार सबके काज की है जे समाज में मिलजुल कर रही, किनको से कोनो तरहक जो कोई मतभेद भ जाए तो आपसी सहमति से ओकरा जे छै जे सम्पन्न कऽ लेबाक चाही।
0: ठीके कहले देबू भाई, देखियो गाँव में जे रहै छी तऽ जतय रहै छी ओकर विकास तऽ बड़ जरूरी छै, बुझि गेलै देबू भाई। तऽ जतय रहब तकर विकास नहि हेतै तहन केना काज चलतै। तऽ गामक विकास के लिए अपना सबके जतेक भी ग्रामीण छथि हुनके सोचऽ पड़तनि जे गाँवके विकास केना होइ। किया तऽ देबू भाई अहाँके घर में कोन चीज के आवश्यकता यऽ की नहि यऽ, कोन चीज के पहिने खगता यऽ, ई तऽ अहीं ने बुझबै। तऽ अपन गाँवमे अहाँके कोन सबसे बेसी चीजक जरूरी यऽ, कोन चीज के विकास करबै तऽ सम्पूर्ण विकास गाँवके फायदा हेतै, ई तऽ ग्रामवासिये के सोचऽ पड़तै।
1: हाँ हाँ छै हे ना, देखियौ कहबितो छै जे सबहक साथ आ सबहक विकास। जहन सब गोटे कोनो तरहक मूलभूत आवश्यकता के लेकर जहन विचार करबै विमर्श करबै, हे यौ मिहिर भाई, पहिनहो जो गाम घर में कोनो तरहक जे शादी विवाह होइ छल, उपनयन होइ छल, जनौ होइ छल, तो ओहि काल में हर टोल के हमर बुजुर्ग लोकन आबै छलखिन हँ, बथान पर दलान पर बैसै छलखिन हँ, और दलान पर जो छै अपन अपन सहमति देल जाइ छल कि देखो फलाना दिन जो छै ई काज शुभ काज हो जा रहल अछि, अहाँ सबके एहिमे सहयोग हेबाक चाही। तो ठीक ओना ही ई तो हम शादी विवाह के गप कलौं, मुंडन के गप कलौं हैं, मुदा कुछ गांव में एहनो आवश्यक आवश्यकता छै जकरा हमरा लोकन के सबहो कोई के मिलजुल के काज करबाक आवश्यकता अछि। कहबितो छै बृहस्पति अकेला सेहो झूठ होइ छै। तऽ गाँव में स्वच्छता के अभियान लऽ लिया, स्वच्छता अभियान जो छै जखने स्वच्छता रहत तखने न अहाँ स्वस्थ रहब।
0: देखियो स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन रहै छै, तऽ ग्राम स्वच्छ रहत तहन शरीरो स्वच्छ रहत, आ जँ शरीर स्वच्छ रहत तऽ मन सभक स्वच्छ रहतनि, सकारात्मक सोच रहतनि। एहि सबसँ तऽ जरूरी छै हे, आ ग्रामके मूलभूत विकास जे छै देबू भाई से जेना सड़क छै, पानि छै, बिजली छै, ई सब जे छै से मूलभूत सुविधा छै ग्राममे उपलब्ध हेबाक चाही। एहि वास्ते सब ग्रामीणके एकत्रित भऽ कऽ ग्राम सभाके आयोजन करऽ पड़ै छै, आ सब ग्रामवासी सोचलथि जे कोन मोहल्लामे कतौ बिजली नहि छै, कतौ पानिक सुविधा नहि छै, कतौ सफाइके कमी छै, ई सब मिल बैसकऽ ग्राम सभामे सब विचार विमर्श केलथि जे ओहि मोहल्लामे एकर असुविधा छै।
1: छै हे ना, देखियौ हमरा लोकनि एकटा सामाजिक प्राणी छी मिहिर भाई, आ समाज में जे रहै छी तऽ कोन चीज के आवश्यकता छै, कोइ चीज के आवश्यकता नहि छै, तऽ ओहि लेल छै जे ग्राम कचहरी ग्राम सरपंच जो छै सेहो बनाल गेल अछि। ग्राम कचहरी छै या पंचायत जो पंचायत में जो मुखिया होइए ओहो जो छै ई चीज के किछु खास कऽ कऽ जो छै ध्यान राखे पड़ै छै। कोनो तरहक समस्या छै तऽ सबसे पहले हुनका आग्रह हुनका जे छै अनुभूति दियौ, हुनका ध्यान दिलैयौ कि भाई हमरा गाम ई चीज के समस्या छै। सब गोटे ओना ओना जखन नहि सुनै छथिन सब गोटे मिलके एकटा जो छै हुनका पास जइयौ कि भाई ई दिन ई

0: अछि। हमरा गाँवमे जे छै सामाजिक आर्थिक असमानताके जो कोइ तरहक समस्या छै तऽ सेहो कहियौ, पानिके समस्या छै सेहो कहियौ। तऽ ओहि लेल जे छै बहुत रास जे सरकार दिससँ ठाम ठाम समय समय पर जे छै मिहिर भाई योजना सेहो चलाओल जाइत अछि। आवश्यकता अछि जागरूकताके, जखन जागबै तखने पैबै आ जहन जगबे नहि करबै तहन तऽ जे मुखियो जी बुझथिन कि भाई जे छै कि भाई जनता हमरा लग तऽ आबिये नहि रहल अछि।
1: देखियौ देबू भाई, सरकारी योजनाके जे छै से सब ग्रामीणके बुझबाक चाही जे सरकार द्वारा चलायल गेल योजना जेना स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, ई सब ग्रामवासीके एकर लाभ उठायल जाय, से सबके बुझल रहत तखने ने सब गोटाके सुविधा भेटतनि। आ सब जगह जब सुविधा भेटतनि सम्पूर्ण ग्रामके विकास
0: हैत। आओर ओतबे नहि, ग्रामीणसँ जखने जे छै बहुत रास समस्या छै। आब देखियौ जे आब किछु दिनके बाद जे अहाँके जे छै बरसातके दिन आयत, आ बरसातमे हमर जे छै गाम घरके जो नाला नाली अछि, नहि बुझलियै, ओ नाला नाली कोना साफ रहत, ओकरा कोना स्वच्छता बनाके रखी। जँ ओकरा स्वच्छता बनाके रखब तखने ना स्वस्थ रहब, आ जहन गन्दगी फैलल रहत मिहिर भाइ तऽ बुझू जे एकर स्वास्थ्य पर सब गोटेके प्रभाव। देखियौ बीमारी कोनो तरहक आबै छै तऽ कहके नहि आबै छै, तऽ एकर प्रभाव सब व्यक्ति पर पड़ै छै, गाम टोलके टोल, समाजके समाज सब पर पड़ै छै। ताहि दुआरे गामके स्वच्छता बनाके रखी, गाममे शिक्षाके व्यवस्था कोना हेबाक चाही एहिपर ध्यान रखबाक चाही। अहाँ कहबे कयलहुँ हँ कि पानी बिजलीके सेहो समस्या कखनो कालके रहै छै, तऽ इहो गपके जे छै हमरा लोकनिके ध्यान रखबाक चाही। आ ई समस्या जे छै हमर ग्राम कचहरी ग्राम जे जे छथि हमर मुखिया जी छथि हुनको ई समस्या कहियौन, आ जो समस्या जहन कहबै तऽ ओ समस्याके बुझथिन, आ जखन बुझथिन तऽ हमर गामके जे छै विकास हैत।
1: देखियौ देबू भाई, शिक्षाक जागरूकतामे ग्रामीण सबके अपन बच्चाके सङ्ग सङ्ग बालिकोके शिक्षा देनाइ परम आवश्यक छै। किया तऽ कहल जाइ छै बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जखन बेटी पढ़त लिखत आ कुशल गृहिणी होइ छै तऽ दू घरके तारै छै, अपन माय बापके तऽ नाम रोशन करिते छै, आ जतय जाइए साउस ससुर अपन पतिके ततहु जे छै ओ अपन नाम रोशन करै छै। तऽ लड़काके शिक्षा तऽ जरूरी छै, लेकिन लड़कीके शिक्षा ओहिसँ बेसी
0: आओर बेसी जरूरी छै। तऽ छैहे ने, जखने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
1: बेटी
0: जखने बेटी शिक्षित होथिन तखने गाम समाज टोलाके जे हर दृष्टिसँ चाहे ओ स्वास्थ्य सम्बन्धी हुए, पेयजल हुए या मनोरंजन हुए, बहुत रास एहन समस्या छै जकरा ओ निदान कऽ सकै छथि। तऽ मिहिर भाइ बेर रहता फेर ओ गपशप करब, मुदा आगे की विचार
1: रमन चमन करबाक।
0: हँ हँ, अहाँ तऽ मनक बात बुझैत रहै छी मिहिर भाइ, तऽ आओ सुनै छी एकटा ई लोकगीत
1: सुनल जाय।

0: मीर भाई अखन हमारा लोकन जो अड़हुल के माला कुंज बिहारी के स्वर में सुनल छो देखियो जेहने बेर ओहने गीत अखन जो देखू जो संध्या कालीन है आ संध्या काल में माँ भगवती के हमारा लोकन मंदिर सेहो जाय छी मैया के जे मंदिर में दीप बत्ती जलाबे ला तो हमारा लोकन जो छे जे एना ही हमारा लोकन जो छे
1: भगवती का आराधना करे छे। देखियो अपना सब ओहिठाम जे छे मिथिला में भगवती का आराधना सदिखन लोक तेम कोनो काज कर्तव्यता होइ छे तो पहिने भगवती गीत गायल जाइ छे आ साँझो जे देल जाइ छे तो अपना ओहिठाम मिथिला में सब ग्राम में घर में भगवती के पीढ़ी रहै छथि सब गोटा साँझ पहर भगवती के साँझ दै छथि आ अखन

0: हाँ तो मीर भाई,
1: हाँ हाँ
0: हमारा लोकन बेर रह फिर रमन चमन के आनंद ले
1: हाँ हाँ।
0: मुदा कार्यक्रम के फिर आगा बढ़ाबी और हमारा लोकन एक सुने छी एक खरीफ अखन देखियो ओना समय जो छे अखन
1: हाँ
0: अखन जो समय है बिया बाल खसल तो हमारा लोकन सुने छी एक खरीफ धान के खेती के तैयारी कोना करी आ इनका से गप कर रहल छे रामचंद्र यादव आ इनका से भेंट करता छे देवनारायण यादव तो आई सुनू आबे छी सुने छी दुनू गोटे के बीच की गप सब
1: तो सुनल जाए।
2: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आज हम आयल छी समैला गाम। ई गाम केवटी प्रखंड के अंतर्गत आवत अछि। एतो के जो किसान अछि ओ बुझो जे बहुत ही मेहनती परिश्रमी आ जुझारू छथि। देख रहल छी हिनका लोकन के जे अखने से जे खरीफ धान के फसिल के तैयारी में लागल छथि तऽ एहि संबंध में एतो के किसान से गप करी। श्रीमान अपने के की नाम भेल?
3: हमर नाम रामचंद्र जी भेल।
2: रामचंद्र जी अपने खेती बाड़ी करे छे?
3: हाँ खूब करे छे खेती बाड़ी की।
2: कौन कौन फसल के खेती करे छे?
3: जेना वो सीजन अभी तो धान के समय अलग तो धान के खेती चलते आप दालिओ रखे छी अपन दालिओ वेल करे छी। मूंगो के खेती होइ छै गहूमो के खेती होइ छै आ देखबे करे छी अखन कते धूप उप छै बारिश तारिश तो होइ नहीं छै ढेर समस्या छै लेकिन होतै खेती जरूर होतै।
2: अच्छा जी रामचंद्र जी आपने अहाँ जो कहलिए जे धान के खेती करे छी तो ओनाहियो जो छै कहबितो छै जे समय से पहले चेत किसान ओना जो अखन जो छै जे खरीफ धान के खेती के लेल हमर किसान श्रोता लोकन अखने से लागल छथि तो अपने जे धान के खेती रामचंद्र जी जो करे छिए ओकर जो छे जमीन के चुनाव तो सेहो करत होबे अहाँ?
3: हाँ हाँ जमीन के चुनाव।
2: तो ओकर जमीन के चुनाव वहाँ कोना करे छे? ओना हमर सभक जे बिहार राज्य अछि एतो के जो जमीन अछि कतो ऊंचगर अछि तो कतो नीचगर अछि कतो गड्ढा अछि तो ओहन काल में जे जमीन के जो छे चुनाव अहाँ कोना करे छे?
3: हाँ तो एकदम नीक बात पूछलहुँ हँ। देखियौ ओहिमे जमीनों पर खेती होइ छै एकटा होइ छै ऊपरी जमीन और एकटा होइ छै मध्यमी जमीन आ एकटा होइ छै निचली जमीन आ ई सब में खेती के अलग अलग प्रक्रिया से खेती कल जाइ छै।
2: रामचंद्र जी अहाँ बहुत नीक गप कहलिए तो अपने जो छै धान के खेती लेल जे माटि के जो चुनाव कलिए जमीन के जो चुनाव कलिए तो ओकरा लेल जो छै जे माटि खेत के अनुसार अहाँ तो उन्नत प्रभेद के सेहो चुनाव करत होबे तो ओकर उन्नत प्रभेद के चुनाव कोना की करे छिए?
3: देखियौ आप जमीनी स्तर पे अगर देखल जाए तो हम सब छी अभी मध्यमी जमीन के स्तर पे ओना कि ऊपरियो जमीन सब छै हमर अपन गाँवक में और हम ऊपरी जमीन पे करे छी उधर लेने छी खेत सब तो ऊपर हम चार पांच तरह के बीज होइ छै जैसे सहभागी प्रभात आ धनलक्ष्मी आ पूसा यह सब बीज होइ छै ये सब लगाबै छी ऊपरी वाला पे ऊपरी भाग के जे जमीन छै ओहि सब पे आ अपन जे हमर खुद के छै जे कि मध्यमी जमीन छै बीच बिचा जमीन छै ओहि पे लगाबै छी अपना संतोष सीता आ सरोज आ राजश्री होइ तो ओना छै प्रभातो होइ छै सहभागी भी होइ छै और ढेरों प्रकार के बीज नाम सब छै लेकिन अभी चार पाँच टा अपन यह में से देख ली कौन उर्वरक रहे बढ़िया ओकर यूज करे छी।
2: मतलब अहाँ एकर प्रभेदक चुनाव कलो है बहुत सुंदर कि जमीन के अनुकूल जो छे रामचंद्र जी अहाँ जो छे प्रभेद के चुनाव करे छी संग संग देखे छी जे चौर चाकर में एहनो एहनो स्थान है जे बुझू जे बारहो मास छत्तीसो दिन में पानि लगल रहत अछि तो ओहि खेत में अहाँ जे छै कोन तरहक प्रभेद के अहाँ लगाबे छी?
3: देखियौ धान के खेती में तो पानी तो बहुत जरूरी होइ छै ठीक छै पानी जमीन वहाँ के नमी होइ के चाही आ मध्यमी जमीन में होइ छै कि पानी के स्तर कनी कम रहै छै थोड़ा मतलब कि समझियौ ना कि ओकर नीचे लेवल रहै छै जमीन में नमी होइ के चाही तो ओकरा लेल हम सब पानी के व्यवस्था कैली पानी के इकट्ठा कैली खेत में चारों तरफ से बनैली पानी के व्यवस्था ताकि ओकर पानी के स्तर बने रहे ताकि बीज भी बढ़िया से फैले आ निचली जमीन में होइ छै कि पानी सुंदर रहै छै ओकर ओकर पानी के लेवल बढ़िया रहै छै तो ओहिमे ज्यादा अहाँ के मेहनत करे के बात नहीं है आ बीज छीट देली अपना उ हिसाब से अपना

0: तो का जो छे आत परवेद के सोच ना करो थे काहे कि त पान जो छे पान लगल छे आ नमर किस्म वाला जे बिया के सो हां चुनाव करत होवे
1: निचली जमीन में जे करे छी है से राज श्री के करे छी और राजेंद्र के करे छी श्वेता के करे छी मसूरी करे छी बीपीटी करे छी यह सब करे छी।
0: अच्छा रामचंद्र जी अपने त यहां परवेदक गप कहलो है संग संग हां जो छे खेती करवा सब पहिने या खेती करवा में बहुत रास पूंजी लगे छे मेहनत लगे छे तो खेती करवा काल यहाँ जो छे खाद उर्वरक के तो ध्यान रखबे एक तो जहन खाद बीज नहीं देवे तो सबटा कल धर बेकार हो जाए
1: देखियो खाद बीज तो जरूरी है फसल के उन्नति के लिए। देखियो हम सब तो साल भर अपना गायो माल जाल जाल सब यहाँ देखबे के लिए दूरा पे तो वो समय कोई कमी नहीं है और रसायन खाद की उपयोग कनी कम कैली और अपना गोबर के कंपोस्ट बना करके खेत में छिटवाई छे खूब गोबर रखने रहे छी और बिकबो करे छै कते आदमी लेओ जाय छै ट्रैक्टर से ट्रैक्टर घर पर से उठा के लेकिन अपनो लेल रखे छी और गोबर के कंपोस्ट में फैलावे छै ताकि ओकर कैल्शियम बनल रहे खेत में और बढ़िया एकदम हम फसल होय छै।
0: देखियो रामचंद्र जी यहाँ कते ध्यान रखे छियै खास क के जे हमर जे किसान सता लोकन छथि बुझे के छथिन जे ज्यादे से ज्यादे रासायनिक खाद के जे व्यवहार करब ना तो बेसी से बेसी उपजा हैत वही नहीं बुझे छथिन कि रासायनिक खाद के व्यवहार कैला से जो खेत के जो छे हानि सेहो होय लगे छे। अहाँ बहुत निक गप कहलिए कि हमरा लोकन जे छे वर्मिंग कम्पोस्ट के व्यवहार करे छी नीम कोटेड यूरिया के व्यवहार करे छी जैविक खेती के व्यवहार करे छी तो ई सब व्यवहार कैला से रामचंद्र जी खेतक जो उर्वरा शक्ति तब बनले रहे छे संग संग जो कर जो खेतक जो ताकत जो है वो बेसी से बेसी दिन बनले रह सके। तो रामचंद्र जी जैविक खाद के बारे में कुछ बताओ मानव स्वास्थ्य के लिए लगा लेल की लाभदायक छे।
1: देखियो अभी होय छे ढेरों प्रकार के अनाज और हर जगह खेती होय छे तो जैविक खेती के जे दाना होय छे बड़ा सुंदर होय छे और शरीर के लिए बहुत अच्छा आहार होय छे। अब जे केमिकल पे जब खेती होय भरे लगले है तो दानों में केमिकल के प्रभाव पड़े छे ऐसे ढेरों प्रकार के बीमारी देखबे करे छे आज हर घर में आदमी बीमार छे वह दाना पानी जे केमिकल वाला सब होय छे वह सबसे बीमार होय छे तो हम शुद्ध खेती कैली जे कि शरीर के लिए भी स्वस्थ रहलक और ओकर हमर सबके खेती के दाना भी एकदम बढ़िया रहलक और शरीर के स्वास्थ्य के लिए
0: बहुत मतलब जे अहाँ जैविक खेती के लिए अहाँ बेसी से बेसी ध्यान दौर
1: नेचुरल जे खेती होय छै प्राकृतिक के वो खेती करियो वहाँ और ओकरो करे के एगो सिस्टम होय छै उस सिस्टम में करियो किया ने खेती होते कते कहे छै नहीं नहीं हम सब नहीं दै छी यूरिया फूरिया तो हमर खेते नहीं होय छै अरे भैया किया नहीं हेतै ओकरा लेल देख रेख करबै किया नहीं हेतै हाँ कीट पतंग लग जाए छे तो थोड़ा बहुत एगो छिड़काव कर दे छे कि आजकल कीट पतंग लग जाए छे कि खराब नहीं करे फसल के ओकर छिड़काव कर दे छे।
0: अच्छा रामचंद्र जी अपने जे बहुत निक चुनाव कहलो है जैविक खेती के दिस अहाँ जो छे कदम बढ़ेलो है तो एहि लेल जो छे आनो किसान श्रोता लोकन के एहि बारे में अच्छी सलाह देबे चाहबे।
1: हाँ हाँ जे भी ई रेडियो के माध्यम से सुन रहल छे उनका हम यही सलाह देब जितना से जितना अच्छा हो अपना घर की उपचारक चीज जैसे कि गोबर के खाद ये सबके कंपोस्ट बना करके खेती करूँ केमिकल की उपयोग कम करूँ तरह तरह के ब्रांड आवे छै कहे छै हमर खाद देवे अहाँ के इतने अनाज होत उतने होने सब कहकर थक गई किछ नहीं होय छै अपन जे तरीका छै पुराना देसी तरीका वह निक छै।
0: देखियौ बहुत निक मतलब ज्ञानक गप कहलक हमरा लोग के जो परंपरा के जो खेती करते आब रहल छी ओनाहियो जो छे हमर पूर्वज ओनाहि करे छलखिन मुदा अखनका दौर में जो देख रहल छी जे हमर किसान श्रोता लोकन मानने मेहनत करे नहीं चाहे छथिन चाहे छथिन कि बेसी से बेसी खाद पटा दिए आ बेसी से बेसी ओकरा से अनाज प्राप्त खेत से कह ली जे मानव स्वास्थ्य लेल जो छे हानिकारक तो होते छे संग संग जो छे जलीय जीव जंतु आ मानव के लेल सेहो नुकसान दे छे। रामचंद्र जी अपने से खेती गृहस्थी विषय पर गप सप क के बहुत निक लागल एहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हाँ देबू भाई अखन अपना सब ई भेंट वार्ता सुनै छलौं की विचार
3: अहाँ के बुझे छी मनक गप बुझि रहल छी आओ सुनै छी एकटा भोला बाबा के एकटा ई लोग

0: वाह बहुत सुंदर। अखन हमारा लोकनि भोला बाबा के लोकगीत सुनल छलो, खूब निक लागल। आशा करै छी जे श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतन। अब देखो एकरे संग जे हमारा लोकन के जो छे, सबसे पहले हमारा लोकन के खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाही। तक कार्यक्रम खेती गृहस्थी में समस्त किसान श्रोता लोकन के स्वागत करै छियन, नमस्कार करै छियन।
1: देखियो देबू भाई, किसान लोकन जे छथि खेती गृहस्थी खूब निक से करै छथि। खेती गृहस्थी में माल जाल सेहो हुनका ओ पोसै छथि, किया तऽ माल जाल पोसि के कम्पोस्ट खाद जे बनबै छथि तऽ माले जाल पोसि के कम्पोस्ट खाद बनै छै ओकर गोबर से। तऽ माल जाल जे छै अखन देखियौ गर्मी मास चलि रहल अछि, तऽ गर्मी मास में माल जाल के सुरक्षा पर कनी विशेष ध्यान देबऽ पड़ै छै, किया तऽ रौद रहल खूब दुपहरिया में माल जाल जे चलि रहल छै खेत में, तऽ मालो जाल के तऽ जीवे छियै ने। बड़का गर्मी में ओकरा माल जाल के रौद में नहीं चढ़ देबाक छै, ओकरा बान के छायादार वृक्ष में राख लेबाक चाही।
0: मिहिर भाई बहुत निक गप कहल हैं हमरा, आशा करे छन जे श्रोता लोकन के सेहो अहाँ के गप निक लागल हेतन। आ देखियो अपने के जे गर्मी लगै है तो केना पंखा, हाथ वाला पंखा हिलाबे लगे छे शरीर पर, तो ऊ तो निमूधन छथिन। माल जाल जो है निमूधन हो या कह नहीं सके छथिन हमरा प्यास लगल है, हमरा गर्मी लगल है। हमरा सबके कर्तव्य बनैत है कि एक तो माल जाल से हमारा लोकन बहुत रास लाभ ले छी, दूध दही पनीर ए तरहक जो सामग्री जो हमरा लोकन के जो खास कर जो छे अनेको तरह शुभ काज में जो छे हमरा लोकन के दूध दही के सेहो भेटत रहे। तो जो एते तरहक लाभ जो हमरा लोकन के भेट रहल है तो हमर सब की कर्तव्य बनत है
1: अगर सुरक्षा
0: समय समय पर, यानी अखनका जो रौद तो देखबे करे छे केहन प्रचंड सन रौद उगैया, तो रौद के देखत कम से कम जो छे 8 बजे से पहने हमरा लोकन के जो छै ओकरा बथान पर माने छाया जत के झोपड़ी छै ओतो बांध दियो, आ नै त जो छायादार पेड़ पौधा छै ओहि ठाम बांध दियो। संग संग हम त पहिने अहाँ कहलहुँ कि माल जाल निमूधन होइ छै, अहाँके प्यास लगल तहत अहाँ कहत नै, हाँ अहाँके कान खड़ा कऽ के अहाँके देखत कि हमर मालिक बहुत छथिन, लेकिन ओ व्यक्त करै छथिन माने कान के सिंगल द के, हाँ कुछ हुनका चाहिए, एक से दो बाल्टी ताजा पानी जो छे ओकरा आगू में देखा दियो, भने माल मवेशी पीबे या नहीं पीबे, हमर जो कर्तव्य है उ करबाक है। संग संग जे छे संध्या कालीन में देखे छे इनके बाध वन दिस जो छे हमर किसान सुता लोकन सेहो जे अनातन दिना में जो छे 3 बजे 2:30 बजे खोल दे छे माल मवेशी के चराबे ला, मुदा संध्या काल में सेहो धूप रहे छे तो वह काल में 4 बजे के बाद सेहो हमरा लोकन के जो छे माल जाल के जो छे बाध बंदिश लो जेबाक चाहिए।
1: देखियो देबू भाई, गर्मी महीना में लाइद में जे माल जाल के खाए ले दे छे, अन्न दे छे, चुनी दे छे, तो गर्मी महीना में जल्दी गंध आबि जाए छे, तो ओकरा माल जाल के जे लाइद में खाए ले दे छे ओकरा भोर के सब दिन लाइद के धोइ देबाक चाहिए, स्वच्छ रहते तखने फिर दोसर बेर ओकर सानी लगेबाक चाहिए।
0: हाँ हाँ देखियो
1: अपने तरह से माल जाल के सुरक्षा गर्मी में बड़ जरूरी
0: जरूरी छे। खान पान के जखन लगाबे छी सानी त माल जाल के जो छै जो जे बर्तन में दे छै जे नाद में दे छै उ नाद के कम से कम धो दियो फ्रेश पान से, आ तखन जो छै ओकरा चारा दियो, आ जहन चारा अपने भोजन के लन लिया। मिहिर भाई देखे छै बेसी काल के जहन भोजन भ जाय छै तो की होय छै ओहिमे तनि अरुआ जाइ छै, तऽ कहै छै भाइ बड़ देर के भोजन छौ, आ खेला से की होइ छै स्वास्थ्य पर कसो प्रभाव पड़ लगै छै। ठीक ओनाही माल जाल के प्रति सेहो हमरा लोकन के स्नेह रखबाक चाही। मिहिर भाई बेर रहत तऽ फेर हमरा लोकन आगू गपशप करब, मुदा आगे
1: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनी।
0: हाँ हाँ की अखने आओ सुनी।

0: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा फोन नंबर लिख लीजिए। हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ 8860088827।
0: हम आज देखते हैं कि लोग खास तौर पे माता पिता आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपी चंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी। तो सर हम आपका बहुत स्वागत

उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।

0: 8827। जी हाँ, 8860088827।
1: हम आज देखते हैं कि लोग, खास तौर पे माता पिता, आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ, बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपीचंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी। तो सर, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद प्रियंका, और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: सर, आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है, हमारे बच्चों का रवैया, जो कि बहुत ही अजीब होता जा रहा है। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं, या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलट कर जवाब दे देते हैं। और सर, कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका, पर आपको ये जानना होगा कि ये परेशानी हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। प्रियंका, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं, तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं, तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
1: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इसको क्या समझें और क्या और क्यों होते हैं ये व्यवहारिक बदलाव?
2: जी हाँ, व्यवहारिक बदलाव मतलब हमारे व्यवहार में बदलाव का आना। जैसे अभी हमने कहा कि बच्चे पलट कर जवाब देने लगते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या बातों को नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, ये व्यवहारिक बदलाव होते हैं और ये हमें बच्चों में नज़र आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब, उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उसे उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है, और उस बदलाव के कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की, बड़ों की बातें जो हैं, उन्हें लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं, ये कि हमें क्यों बोल रहे हैं, और वो उलटकर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं।
1: मतलब ये नेचुरल है सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभ्य बन जाए, या ठीक हो जाए, या इन चीजों से बाहर आ जाए, आज्ञाकारी बन जाए? क्योंकि कारण कोई भी हो सर, माँ बाप का दिल इन बातों से बहुत दुखता है। बच्चे नहीं समझते, पर उनका ये व्यवहार माँ बाप के दिल को बहुत दुखी कर देता है। कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना दुख सहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब से बच्चा दुनिया में आता है, तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं। पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका, माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं, माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके। और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है? और ये सोच सोच कर माँ बाप परेशान होते हैं और वो तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक ज़रूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका, हमारे श्रोताओं, एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं,

0: तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे, हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं। उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति, वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज़ को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उन चूँकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं, और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है, और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती और माँ बाप अगर किसी चीज को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड़ ही न करें, बचपन से जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की ज़रूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा, डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, और बस यही एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को, पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और ये गलतियाँ बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की ज़रूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था, उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उस

0: को करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वहीं किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों, एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों, हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों, याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए। दोस्तों, जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे सारा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है। सो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: तो दोस्तों, और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

0: हाँ, श्रोतालोकन अखन प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुन रहल छलो। आब एकरे संगे कार्यक्रम के फेन आगा बढ़ाबी। और मिहिर भाई, जे हमर किसान श्रोतालोकन जो खेती बाड़ी करै छथिन, तो समय के देख के खेती बाड़ी करै छथिन, या समय के अनुकूल जहन खेती बाड़ी करै छथिन तो उपजा बाड़ी सेहो नीक होइ छै आ कीट व्याधि के बचाव सेहो होइ छै। तऽ मौसम केना की अछि ओ हमर किसान श्रोतालोकन के बता देल जाउ।
1: देखियौ देवू भाई, बिहारक मौसम के पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहार में किछु जिला में उमस भरल गर्मी रहत आ 6 से 9 जुलाई तक कोनो कोनो स्थान पर गरज और चमक से तेज

0: हवा के साथ हल्लुक वर्षा होइक सेहो संभावना अछि। एहि दौरान आकाश मे अधिकांश समय आंशिक रूप से मेघ लागल सेहो रहि सकैए। एहि अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि और सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहिक सेहो संभावना छै। ओते न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहिक सेहो संभावना अछि। देवू भाई, अगला कुछ थोड़ेक स्थान पर 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा बसात चले के सेहो संभावना अछि। ओते सापेक्ष आर्द्रता के गप करब तो भोर में 65 से 70 प्रतिशत आ साँझ में 20 से 25 प्रतिशत रहे के सेहो संभावना अछि।
1: तो ई छल मौसम संबंधी सूचना। मिहिर भाई, एकटा कहबी छै जे समय से पहले चेत किसान, समय के अनुकूल जखन हमरा लोकन खेती बाड़ी करै छी तो बेसी लाभदायक अछि। आब अखने देखू ना जे समसामयिक खेती जे हमर किसान श्रोता जे खेत पथार में सेहो लगेने छथि, जेना अखन देख रहल छै जे गरमा मूँग के फली के तोड़ि लेबाक चाही आ एकर उपरांत जे मूँग पौध के हरियर खाद लेल पौध के माटि पलटे वाला हल से जमीन में गाड़ देबाक चाही। मूँग आ उड़द राहर मिश्रित फसिल के बाग सेहो करबाक चाही। मूँगफली अंडी तिल के बाग करबाक चाही। बाग से पहिने हमरा लोकन के बीजोपचार सेहो अवश्य कऽ लेबाक चाही। शकरकंद के कोराइ कऽ लेबाक चाही, जकरा अल्हुआ कहल जाइत अछि गाम घर में, ओकर कोराइ कऽ लेबाक चाही। संग संग पौध स्थली में बिया लेल लत्ती के सेहो लगाबी। पटुआ के बाग के सोनापट फसिल के देख रेख आ निकाय गोराई सेहो करबाक चाही। मेस्ता पटुआ के बाग सेहो हमरा लोकन के समय के अनुकूल करबाक चाही। आ मीर भाई, आम लीची एहि तरहक फलदार वृक्ष लेल खोदल गेल खद्धा में माटि के संग अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और थीमिट द ऊपर से भर देबाक चाही। संग संग अखन जो समय अछि, जब तो हमर किसान सब ओनाही अखन तो पानि भइए गेला, तो पानि जखने भए गेल तऽ माटि में सेहो हाल भऽ गेल अछि। तऽ अखने से हमरा लोकन जो छै गरमा धान में कमठान कऽ नेत्रजनक जे बचल जे मात्रा अछि ओकरा ओहिमे उपरिवेशन कऽ देबाक चाही। किसान श्रोता लोकन, जँ एहि तरहे हमरा लोकन जे छै खेतीबाड़ी जँ करै छी मीर भाई, तऽ कहबी तो छै जे अहाँ समय के अनुकूल जँ करबै ना तऽ उपजा बाड़ी नीक होयत, संग संग जे छै रोग व्याधि सँ कीट पतंग सँ सेहो बचाव होयत।
0: आ समय पर खेती जे छै ना, अगता खेती मे बेसी उपजा होइ छै।
1: हाँ हाँ, ओतबे नहि, आ मान लिया जे बाड़ी झाड़ी में जो तिमन तरकारी लगेने छी ओनाहियो बरखा बूंदी में जो छै कीट व्याधि के समस्या बेसी से बेसी बैठ जाए छे, तो ओकरो देख रेख करत रहू। बाड़ी झाड़ी में जो तिमन तरकारी लगेने छी, सजमन भेल, राम तुरोई भेल, घिवरा भेल, तो ओकरा तो नानटा से हमरा लोकन पोले छी, पासे छी, पोले पालन पोषण करे छी, जब नम्हर भ जाए छे तो ओहिमे कीट के आक्रमण होय लगे छे,
0: खरपतवार सेहो बेसी भ जाए छे।
1: तो ई सब देख रेख करत रहू। आब जो की विचार हमरा लोकन के जो छै खेती गृहस्थी से हमरा लोकन किए तब हमरा लोकन समय में बांधल छी
0: में बांधल छी
1: तो हमरा लोकन किसान श्रोता लोकन से चले के आज्ञा ले। नमस्कार मीर भाई।
0: नमस्कार देबू भाई।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में पटना केंद्र से किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: करता हूँ, रेडियो सेट के अलावे आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: और इस गीत के बाद
7: छाया की

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की। एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास ने विधान

0: परिषद चुनाव के लिए कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की एक अदालत ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल, टीम इंडिया के सबसे युवा क्रिकेटर बने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी समय बाकी है, इसलिए लोगों को इंतजार करना चाहिए।
2: अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार।
0: गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जबकि 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। उम्मीदवार 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती होगी। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस में पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप राजू कुमार सिंह पर लगा था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 8,850 से अधिक व्यवहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं वैभव।

0: अब सूर्यवंशी के क्रिकेट कैरियर के बारे में।
1: समस्तीपुर के ताजपुर से निकलकर भारतीय क्रिकेट के फलक पर सबसे चमकीले सितारे के रूप में उभरने वाले वैभव सूर्यवंशी ने केवल 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। यूथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 58 गेंद में शतक जड़कर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। आईपीएल 2026 वैभव के क्रिकेट करियर का गोल्डन टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इस सीजन में उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का अवार्ड जीता। साथ ही वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सुपर स्ट्राइकर और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड भी अपने नाम किया। आईपीएल से ठीक पहले आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में वैभव खिताबी जीत के नायक रहे। वैभव सूर्यवंशी का कैरियर इस समय भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में है। उन्होंने T20 क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब पूरी दुनिया की नजरें सीनियर इंटर क्रिकेट में उनके डेब्यू पर टिकी है। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल होने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 18 के विजेता रेयान मोहम्मद को 22,50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। श्री चौधरी ने रेयान अहमद को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मोइनुल्लक स्टेडियम के पुनर्विकास काम में तेजी लाने को कहा। श्री चौधरी ने जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर खेल अवसंरचना के विकास और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
3: इधर आइए। इधर
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
6: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राओं को पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दौरे के लिए रवाना किया गया। आईआईटी पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने छात्रों को रवाना किया। श्री कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम विविधता में एकता का संदेश देता है।
7: हमारे बिहार के 50 छात्र छात्राएं चयनित होकर पंजाब में जा रहे हैं। हमारे बिहार की संस्कृति और पंजाब की संस्कृति को एकजुट करने की भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है। एक राज्य से दूसरे राज्य के छात्र आपस में अन्य राज्यों में जाकर वहाँ अपने राज्यों का साझा करें।
0: इस अवसर पर आईआईटी पटना के निदेशक टीएन सिंह ने कहा कि युवा संगम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
8: एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर बिहार के 50 के करीब विद्यार्थी छात्र और छात्राएं यहां से पंजाब की यात्रा पे निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे विद्यार्थी

0: पहली बार पंजाब जा रहे हैं तो उनको ये अवसर मिलेगा कि वो देख पाएं, समझ पाएं और जो किताबों में पढ़े हैं उससे अंतर पाएं कि क्या अंतर है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि लोग कहते हैं कि या तो भ्रमण करिए तब ज्ञान होता है या बहुत ज्यादा पढ़िए तब ज्ञान होता है।
1: सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही में सबसे अधिक 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के रुपौली में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिलों में भी बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के चतकुटिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर, दक्षिण बिहार एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: सुपौल जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक चार पहिया वाहन से 240 लीटर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन पर नामांकन पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों दरभंगा जिले की रहने वाली थीं। पश्चिम चंपारण जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुजटा पटजिरवा पंचायत में गंडक नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के 5 गांव मंदना, कृपा बिखा, अमानतपुर, सोहदी और विमान का चयन मुकदमा मुक्त गांव के तहत किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को प्रस्ताव भेजा है। मधुबनी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मेगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप में 200 से अधिक लाभुकों के बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऋण वितरित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा कैमूर में पिंक सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने 2 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत मुंगेर जिले के विभिन्न गांवों में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की। एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास ने विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की एक अदालत ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल, टीम इंडिया के सबसे युवा क्रिकेटर बने। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच वैशाली जिले में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को नियमित एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। जिला प्रशासन स्टॉक और वितरण की लगातार निगरानी कर रहा है तथा कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। जिले में कुल 8 लाख से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ता है, जिन्हें 118 गैस एजेंसियों के माध्यम से होम डिलीवरी के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। इधर जिले में सप्ताह के शनिवार को नो फ्यूल डे अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बीते शनिवार को आयोजन के तहत ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों के पदाधिकारियों और कर्मियों ने पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय साइकिल, पैदल, सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया। जिला प्रशासन ने इसे एक जन जागरूकता की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए लोगों से प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से इस अभियान को अपनाने की अपील की है। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रभारी मंत्री निशांत की अध्यक्षता में बीते दिनों समाहरणालय स्थित पुष्करणी सभागार में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री और जिला नागरिक सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, राजस्व, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही हाजीपुर वैशाली सड़क चौड़ीकरण, हर घर नल जल योजना तथा महुआ मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा शुरू करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। श्री निशांत ने सभी लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। इधर जिले में चमकी बुखार की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए व्यापक स्तर पर सतर्कता और जन जागरूकता अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। एग्री स्ट्रैक योजना के तहत संचालित फार्मर रजिस्ट्री अभियान में वैशाली जिले ने 120.1% उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 2,573 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा चुकी है, जिससे कृषि योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचने में सहायता मिल रही है। जिला प्रशासन ने शेष किसानों से 30 जून 2026 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने की अपील की है। जिलाधिकारी द्वारा बालिका सशक्तिकरण, लैंगिक समानता पर आधारित शुरू की गई पहल जियो नन्ही परी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पहल की संकल्पना और नामकरण जिलाधिकारी वर्षा सिंह द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में स्थापित करना तथा बालिका सम्मान को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। वैशाली जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण और नदी संरक्षण को लेकर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जिले के सभी 7 नगर

0: निकायों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण, साफ सफाई अभियान, नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण, चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और नदी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी विशेष चर्चा रही, जिसके अंतर्गत लोगों ने अपनी माताओं के नाम पर पौधा लगाने का संकल्प लिया। वहीं हाजीपुर के पार्क परिसर तथा नमामि गंगे घाट कोनहारा में भी वृक्षारोपण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
1: अभी आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ विशेष साक्षात्कार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती और आकाशवाणी समाचार पटना के प्रमुख अजय कुमार।
3: कार्यक्रम के साथ मैं प्रियरंजन भारती और मेरे साथ हैं आकाशवाणी पटना के समाचार प्रमुख श्री अजय कुमार। श्रोताओं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की मजबूती, पारदर्शिता और युवाओं के रोजगार को लेकर इन दिनों बड़े नीतिगत फैसले किए जा रहे हैं। सरकार शैक्षणिक सुधारों को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। इसी पृष्ठभूमि में आज की इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी। स्वागत है शिक्षा मंत्री जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे माननीय मंत्री जी, शिक्षा विभाग की कमान समाज

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बेवफा सनम से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल। रानी मलिक के लिखे गीत को संगीत से सजाया है अमर उत्पल ने।

क्षमा करेंगे इस फिल्म के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक इस गीत को गा रहे हैं, फिल्म का नाम है तमन्ना।

0: मन्नान शाह के गाए नमस्ते इंग्लैंड फिल्म के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विज्ञान कार्यक्रम।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम विज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं कल्याण कुमार झा। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परस्पर संबंध के बारे में, जिसका विषय होगा चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा दूसरी चर्चा का विषय होगा आधुनिक जीवन एवं स्वास्थ्य समस्याएं। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बातें करते हैं चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। श्रोताओं, भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है। भारत में विज्ञान के उद्भव की बात की जाए तो ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत में विज्ञान का उद्भव हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों से वहां के निवासियों की वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगों का पता चलता है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त तथा आर्यभट्ट द्वितीय और रसायन विज्ञान में नागार्जुन की खोजों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी खोजों का प्रयोग आज भी किसी न किसी रूप में हो रहा है। आज विज्ञान का स्वरूप अधिक विकसित हो चुका है। पूरी दुनिया में तेजी से वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं। इन आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाद साहा, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, श्रीनिवास रामानुजन, हरगोविंद खुराना आदि का वनस्पति भौतिकी, गणित, रसायन, यांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय विज्ञान का विकास प्राचीन समय में ही हो गया था, जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां अभी अपनी बस्तियां बसाना सीख ही रही थीं। उस समय में भारत में सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसाकर रहने लगे थे। उस समय तक भारत में भवन निर्माण, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि की स्थिति उन्नत थी। आर्यों के साथ भारत में विज्ञान की परंपरा और भी विकसित हो गई। इस काल में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल, चिकित्सा, धातु इत्यादि क्षेत्रों में विज्ञान ने खूब उन्नति की। ईसा के जन्म से लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ होते हुए ईसा के जन्म के बाद लगभग 11वीं सदी तक कई वैज्ञानिकों जैसे आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कनाद तथा सवाई जयसिंह इत्यादि की एक लंबी परंपरा विकसित हुई। श्रोताओं, ये तो था भारत में विज्ञान के विकास की पृष्ठभूमि। अब बातें करते हैं चिकित्सा विज्ञान की। भारत में चिकित्सा की भी सुदीर्घ परंपरा है। भारत में चिकित्सा शास्त्र को वेद तुल्य सम्मान दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद की संज्ञा में अभिनिहित किया गया है। भारतीय चिकित्सा के विषय में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में विविध रोगों के उपचारार्थ प्रयोग किए जाने के संबंध में भैषज सूत्र संकलित हैं। इन सूत्रों में विभिन्न रोगों के नाम, उनके निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों के नाम भी दिए गए हैं। जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा और मानसिक चिकित्सा के विषयों में इसमें विस्तृत विवरण मिलता है। अथर्ववेद के बाद ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व काय चिकित्सा पर चरक संहिता और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता मिलती है। ये चिकित्सा शास्त्र के प्रामाणिक और विश्वविख्यात ग्रंथ हैं। चरक संहिता के बारे में बातें करें तो महर्षि चरक को काय चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ लिखने का श्रेय जाता है। चरक संहिता को औषधीय शास्त्र में आयुर्वेद पद्धति का आधार माना जाता है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का शास्त्र।

चरक संभवतः इस बात को जानते थे कि शरीर में हृदय एक मुख्य अवयव है। उन्हें शरीर में रक्त संचार क्रिया का भी ज्ञान था। वे यह भी जानते थे कि कुछ बीमारियां ऐसे कीटाणुओं के कारण होती हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से सीधे नहीं देख सकते। श्रोताओं, चरक संहिता में तत्कालीन प्रशिक्षित चिकित्सकों और चिकित्सालयों का भी विवरण मिलता है। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने चयापचय, पाचन और शारीरिक प्रतिरक्षा के बारे में बताया। चरक संहिता में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। चरक को आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों का भी ज्ञान था। उन्हें उन कारणों का भी पता था जिससे बच्चे का लिंग निश्चित होता है। चरक संहिता का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में हुआ है। यही इसके विश्व प्रसिद्ध होने का प्रमुख प्रमाण है। अब कुछ बातें सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत रचित यह ग्रंथ भारतीय शल्य चिकित्सा पद्धति का विश्वविख्यात ग्रंथ है। इस संहिता में सुश्रुत अपने से पहले के शल्य चिकित्सकों के ज्ञान और अनुभवों को संकलित कर एक व्यवस्थित रूप दिया है। अपनी संहिता में उन्होंने लिखा है कि चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी मृत शरीर के विच्छेदन से अपने कार्य में कुशल बनते हैं। सुश्रुत के अनुसार शव विच्छेदन एक प्रक्रिया है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के लिए 101 उपकरणों की सूची भी इस संहिता में दी है। उनका कहना था कि इनके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार स्वयं भी उपकरण तैयार करने चाहिए। उनकी सूची में चिमटियां, चाकू, सुइयां, सलाइयां तथा नालिकाकृति के वे सब उपकरण हैं जिनका प्रयोग आज के शल्य चिकित्सक करते हैं। शल्य चिकित्सा से पहले उपकरणों को गर्म करके कीटाणु रहित करने की बात भी उन्होंने कही है। सुश्रुत भुजनलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में बहुत दक्ष थे। सुश्रुत को पूरे संसार में आज प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में नाक, कान और ऊंट की प्लास्टिक सर्जरी का पूरा विवरण दिया गया है। श्रोताओं, चरक और सुश्रुत ही की परंपराओं को अनेक सुप्रसिद्ध चिकित्सकों ने आगे बढ़ाया। महर्षि अजेय ने नाड़ी और श्वास की गति पर प्रकाश डाला। महर्षि पतंजलि ने योग से शरीर को निरोग रखने के उपाय बताए। आधुनिक चिकित्सक भी अब हृदय रोगों के निदान के लिए योग का सहारा लेते हैं। आचार्य जीवक भगवान बुद्ध के चिकित्सक थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा की विधियां बताई हैं। वृद्धजय में गिने जाने वाले वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता की रचना की थी। इनमें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान समाहित हो गया है। माधवाकर रोग निदान और रोग लक्षणों पर प्रकाश डालने वाले पहले आचार्य थे। चरक संहिता के संपादक, दृढ़बल तथा भाव प्रकाश के लेखक भाव मिश्र चिकित्सा जगत के महान आचार्य थे। श्रोताओं, पशु चिकित्सा विज्ञान पर नजर डालें तो भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान भी अधिक विकसित था। घोड़ों, हाथियों, गाय बैलों के चिकित्सा से संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। शालिहोत्र नामक पशु चिकित्सक के हय आयुर्वेद, अश्वलक्षण शास्त्र तथा अश्व प्रशंसा नामक तीन ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें घोड़ों के रोगों और उनके उपचार के लिए औषधियों का विवरण है। पालकप्य के हास्ते आयुर्वेद में हाथियों की शरीर रचना तथा उनके रोगों का विवरण, उनके रोगों की शल्य क्रिया और औषधियों द्वारा चिकित्सा, देखभाल, अन्य विवरण मिलता है। श्रोताओं,

ये हैं हमारे चिकित्सा विज्ञान की पृष्ठभूमि। अब आते हैं आज के विज्ञान कार्यक्रम की चर्चा के मूल विषय की ओर, अर्थात चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में बातें करें। श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच गहरा संबंध है जो मानव जीवन, स्वास्थ्य और चिकित्सा पद्धति को लगातार उन्नत और सटीक बना रहे हैं। नई तकनीकों और उपकरणों ने बीमारियों के सटीक निदान से लेकर जटिल उपचार तक में क्रांति ला दी है। चिकित्सा विज्ञान में प्रौद्योगिकी के मुख्य योगदान की बात करें तो उन्नत निदान और इमेजिंग, रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ, कृत्रिम अंग और प्रत्यारोपण तथा जीनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन प्रमुख हैं। श्रोताओं, उन्नत निदान और इमेजिंग अर्थात एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों से शरीर के अंदरूनी हिस्सों की स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त की जाती हैं, जिससे बीमारियों का शुरुआती दौर में ही पता लगाना संभव हो गया है। रोबोटिक सर्जरी अर्थात रोबोटिक्स के उपयोग से शल्य चिकित्सा अत्यधिक सटीक हो गई है, जिससे कटाई कम होती है, रक्तस्राव कम होता है और रोगी जल्दी ठीक हो जाते हैं। अपने राज्य बिहार और आसपास के क्षेत्रों में भी अब अत्याधुनिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ अर्थात इंटरनेट स्मार्टफोन की मदद से दूर दराज के मरीज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। कृत्रिम अंग और प्रत्यारोपण के अंतर्गत 3D प्रिंटिंग तकनीक से अब सटीक और आरामदायक कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक पेसमेकर और बायो मटेरियल्स अंगों की कार्यप्रणाली को सुचारू रखने में मदद कर रहे हैं। जीनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के तहत DNA अनुक्रमण की तकनीक से व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना के अनुसार दवाएं और उपचार तैयार किए जा रहे हैं। भारत सरकार और चिकित्सा संस्थान लगातार इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसे निकाय स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों के व्यावसायीकरण और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करते हैं। IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी अब चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग में विशेष स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं, ताकि भविष्य के चिकित्सक अत्याधुनिक तकनीकों में पारंगत हो सकें। हाल के दशकों में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग के एकीकरण के कारण ही संभव हो पाई है। आज चिकित्सा विज्ञान के सामने मौजूद चुनौतियों को देखते हुए देश को ऐसे कुशल चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकता है जो चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समन्वय की दिशा में काम कर सके और इन दोनों विषयों के बीच सेतु का काम कर सके। इसी मांग को समझते हुए IIT खड़गपुर ने वर्ष 2001 में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय SMST की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अंतः विषयक शिक्षण और अनुसंधान के लिए एक मंच प्रदान करना था, जिससे भारत में एक बेहतर एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित हो सके। अभी 25 मई 2026 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने नई दिल्ली में मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री 1-to-1 कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया। यह देश का सबसे बड़ा जैव चिकित्सा नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम था।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा, नवाचारों के व्यावसायीकरण और तकनीकी हस्तांतरण में तेजी लाना था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संस्थानों और नव प्रवर्तकों से उद्योग भागीदारों को विनिर्माण और व्यावसायीकरण के लिए 41 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण इस आयोजन का मुख्य आकर्षण था। हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को लक्षित करने वाले टीके अर्थात वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा उपकरण और बायोमेडिकल समाधान शामिल थे। श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ शब्दावलियों की चर्चा करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो जानते हैं कुछ शब्दावली एवं उनकी अवधारणाओं के बारे में। बायो पावर एक शब्द है, मिशेल फूको द्वारा पेश किया गया एक शब्द जो सत्ता की उस तकनीक का वर्णन करता है जिसे राज्य किसी आबादी पर शासन करने के लिए लागू करते हैं, जिसमें शरीर को ही जैव राजनीति के अनुशासन और नियामक व्यवस्था के अधीन कर दिया जाता है। फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी FMRI, यह एक ऐसी तकनीक है जो कुछ खास उद्दीपनों के जवाब में मस्तिष्क में रक्त के ऑक्सीजन स्तर और रक्त प्रवाह में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करके मस्तिष्क की गतिविधि को मापती है। हालांकि FMRI द्वारा उत्पन्न छवियों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है और यह तकनीक कुछ हद तक अपूर्ण है, क्योंकि उद्दीपन और रक्त प्रवाह में देखी गई प्रतिक्रिया के बीच 1 सेकेंड तक का समय अंतराल हो सकता है। MRI अर्थात मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मानव शरीर के तत्वों की चुंबकीय विशिष्टता का उपयोग करके शरीर की आंतरिक संरचनाओं और कार्यों की छवियां बनाती है, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी के समान लेकिन उससे अधिक स्पष्ट इमेजिंग तकनीक प्रदान करती है। न्यूरोएथिक्स आधुनिक न्यूरोलॉजी द्वारा उठाए गए नैतिक प्रश्न और इसकी क्षमताएं न केवल विचार प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, स्वायत्तता के विचार पर सवाल उठाती हैं, बल्कि संवर्धन दवाओं के माध्यम से मन और स्मृति में हेरफेर करने की क्षमता भी रखती हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी PET, MRI और FMRI की तरह PET एक इमेजिंग तकनीक है जो शरीर के भीतर होने वाली कुछ प्रक्रियाओं को दृश्यमान बनाती है। इसके लिए शरीर में एक हल्का रेडियोधर्मी पदार्थ डाला जाता है जो रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करता है। एक विशिष्ट उत्तेजना दिए जाने पर रक्त प्रवाह का मानचित्रण किया जा सकता है, जिससे सक्रिय क्षेत्र की छवि प्राप्त होती है। श्रोताओं, अब रुख करते हैं विज्ञान कार्यक्रम के आज के इस अंक की दूसरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है आधुनिक जीवन एवं स्वास्थ्य समस्याएं। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। रोग की अनुपस्थिति एक वांछनीय स्थिति है, लेकिन यह स्वास्थ्य को पूर्णतया परिभाषित नहीं करता है। वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल हैं। स्वस्थ व्यक्ति रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए तथा किसी भी परिवेश के अनुसार अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं, परंतु जब व्यक्ति शरीर में किसी भी पदार्थ की कमी या अधिकता अथवा अनुपस्थिति के कारण अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य न कर पाए तो उसे रोग की स्थिति कहते हैं। श्रोताओं, हमारे शरीर में किसी भी पदार्थ की कमी, अधिकता या अनुपस्थिति रोग का कारण बनता है और इन्हें रोग के कारकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह रोग के कारक मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला, जैविक कारक। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोवा,

मेंथस इत्यादि शामिल हैं। पौष्टिक कारक, इसमें खनिज, विटामिन्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं। भौतिक कारक, इसमें ताप, दाब, आर्द्रता, ध्वनि, विकिरण इत्यादि आते हैं। रासायनिक कारक, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बीजाणु, पराग इत्यादि हैं। यांत्रिक कारक, इसमें दुर्घटना, चोट, गिरना इत्यादि शामिल हैं। एक अन्य कारक है आधुनिक जीवन शैली, जिसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। श्रोताओ, रोग के कीटाणु सिद्धांत की बात करें तो इसके अंतर्गत अनेक सूक्ष्मजीव, हानिकारक पदार्थ आते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्मजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। इस जीवाणु का नाम एंथ्रेक्स है। रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत रोग का कीटाणु सिद्धांत कहलाता है। मानव रोग मुख्यतया दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग क्रोमोजोम की संख्या में परिवर्तन अथवा जीन उत्परिवर्तन के कारण विभिन्न तरह की अनियमितताएं जीन में पाई जाती हैं जो वंशानुगत होती हैं। ये रोग गर्भावस्था तथा जन्मकाल ही से जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं, जैसे स्किल सेल एनीमिया, रंग वर्णांधता, रंजकहीनता, क्लाई इन्फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमिफीलिया, हृदय के विकार इत्यादि। उपार्जित रोग, ये ऐसे रोग हैं जो जन्म के बाद या जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं। उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग एक व्यक्ति या जीव के दूसरे व्यक्ति या जीव के संपर्क में आने से फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोवा, कवक आदि से फैलते हैं। जीवाणु जनित रोगों की श्रेणी में टिटनेस, सेफलिस, हैजा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ आदि। विषाणु जनित रोग हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला, गलसुआ इत्यादि। प्रोटोजोवा जनित रोग की बात करें तो मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग इत्यादि। कृमिजन्य रोगों में फाइलेरिया, टीनिएसिस, एस्केरिएसिस इत्यादि आते हैं। श्रोताओं, अब आधुनिक जीवन शैली से होने वाले रोगों की बातें करते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने हमें आराम और तकनीकी सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ा है। गतिहीन दिनचर्या, जंक फूड का अधिक सेवन, तनाव और डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग प्रमुख कारण हैं इन स्वास्थ्य समस्याओं के। इससे मधुमेह, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। श्रोताओं, मोटापा और मधुमेह, शारीरिक गतिविधियों की कमी और प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड भोजन के कारण मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा कई गुना बढ़ गया है। खराब खानपान, कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन और लगातार बैठे रहने की आदत दिल की बीमारियों के मुख्य कारण हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे तनाव और डिप्रेशन, अत्यधिक काम का दबाव, सोशल मीडिया की कृत्रिम और दिखावटी दुनिया तथा अकेलापन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहे हैं। अनिद्रा, देर रात तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन का उपयोग करने से मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन होता है, इसका स्राव रुक जाता है, जिससे नींद न आने की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं जैसे गर्दन और पीठ दर्द, कंप्यूटर

और फोन पर लगातार घंटों झुके रहने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन में दर्द की समस्या भी आम हो चुकी है। मांसपेशियों में जकड़न, एक ही जगह पर लगातार घंटों बैठे रहने से शारीरिक लचीलापन खत्म हो जाता है। श्रोताओं, दिन में 6 घंटे से अधिक समय तक लगातार बैठे रहने से समस्याएं हो सकती हैं। रीढ़ की हड्डी का गलत संरेखण, गतिहीन जीवन शैली, विशेष रूप से खराब मुद्रा के साथ काइफोसिस यानी गोल ऊपरी पीठ और पूर्वकाल श्रोणी झुकाव जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है, जो रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक संरेखण को विकृत कर देती है। मांसपेशियों की कमजोरी, निष्क्रियता के कारण समय के साथ नितंबों की मांसपेशियां और कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे पीठ दर्द और गतिशीलता में कमी आती है। संचार संबंधी समस्याएं, लंबे समय तक बैठे रहने से रक्त प्रवाह बाधित होता है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस और वेरिकाज वेंस का खतरा बढ़ जाता है। मनुष्य होने के नाते हम सुविधा के लिए ही बने हैं, लेकिन हम इस पर जितना अधिक निर्भर होते हैं उतना ही हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की बलि देते हैं। हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार नए नए उत्पाद और प्रणालियां बनाई जाती हैं। हमें शारीरिक रूप से जितना कम काम करना पड़े उतना ही बेहतर है, लेकिन क्या यह बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है? संतुलित जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। सक्रिय रहें, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम, योग या सैर के लिए निकलें। पौष्टिक आहार, जंक फूड की जगह हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी को अपने आहार में शामिल करें। स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाए रखें। श्रोताओं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और छोटी छोटी आदतें बदलकर अर्थात अपने जीवन शैली को संतुलित करके इन आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद के साथ सूत्रधार मुझे यानी कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान कार्यक्रम, निर्माण और वाचन कल्याण कुमार झा का था, प्रस्तुतकर्ता थे असद दाऊद। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक

0: उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के

0: बन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का सड़क पर एक ट्रक

0: से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साईं सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with

0: नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस एंड रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर टुडे इनॉग्युरेटेड द समृद्धि केंद्रम एट नाराकोदुरु विलेज इन आंध्र प्रदेश's गुंटूर डिस्ट्रिक्ट मार्किंग अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। The center has been established under the central government's BharatNet Udyami initiative. With this, Narakaduru has become the third village in India and the first in the Telugu states to host the integrated rural development model. The Samrid-

0: India Ashishpurti starred with a hat-trick as skipper Ketan Kushwaha scored the other goal. Meanwhile, the Indian women's team clinched bronze, beating South Korea 3-0. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian men's under-18 hockey team on winning the Asia Cup 2026. In a social media post, Mr. Modi said the team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. The Prime Minister also congratulated the Indian women's under-18 hockey team on securing the bronze medal at the Under-18 Asia Cup 2026. In football, India thrashed Bangladesh 3-1 to clinch a record-extending 6th SAF Women's Championship 2026 title at Margao, Goa today. Pyari Chasha, Linda Comserto and Sanfida Nongrum scored a goal each for India, while Rituparna Chakma netted the lone goal for Bangladesh. In the World Yogasan Sports Championship 2026, India's Rohan Taide won the gold medal at Ahmedabad today. He accomplished this achievement in the boys' sub-junior artistic single competition. So far, India has won a total of 7 medals, including 6 gold, in this world-class yoga competition. In chess, 19-year-old Savita Srivastava has won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship in Ulaanbaatar, Mongolia. With this win, she also secured qualification for the 2027 FIDE Women's World Cup. In the one-off cricket test against Afghanistan, India ended day one with a score of 368 for 3 in their first innings at stumps in New Chandigarh. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Swalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Swalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा

लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में ये कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में ये ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया है। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की, आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर

0: में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार

कुर्बान अली। उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी की लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही वह होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत यन था वो मेरी जैसा, तो अब मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्हें कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित और

0: वंचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा। पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला तो जोशी बोले, तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले, मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं। क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीज़ों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए। बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान ली कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के

0: कारण ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीज़ों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविज़न, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है? हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञे जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञे और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा, ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर, विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
3: जी,
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
3: जी।
4: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने

0: मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है।
0: जी,
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया,

0: को, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीज़ें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुर्डे जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुर्डे।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious

0: TC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
1: Rushikesh Gangurde, Akashwani ke A श्रेणी के गायक कलाकार है। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है, जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है, और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है, और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशाळकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
0: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth, Pune.
1: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी and on the harmonium by Shri Makaranda Kharvandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिमी एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues.

होता है। कल सुबह 5:45 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद।